0: Hey Paul Ruji Naka Akashwani Jwai Ravi Soi Waka Delhi Station Ibn Daga Kubor Hikdin Hindi Gawa Sanmanit Bin Borum Kubor Hikdin Parang Hey Paul Ru Sanmanit Richem and Iwi Program Madang Sa Yunga Akashwani Jwai Hen Ruchpa Hey Paul Ruch Pamlin The Kahadu Te Borka Nito Ka
1: Namaskar Akashwani Samachar Kesat Me Sir Firozi राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस

0: बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां

एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित

0: जो पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार

0: कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान

0: में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प मोड़ शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में। जो

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में, पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे। जरा

0: तुमसे है प्यार, रुमाल हमें देके जाना।
1: सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

कार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहाँ से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

ताशी और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

वफा, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदिओ जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उनको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मन्ना डे जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या होगा हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगी कि आपके मुँह से ये गाना सुनूँ। तो हमने उनको म्यूजिक हॉल पर बुला लिया, तो एक दफ़े सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफ़े इन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफ़े जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर।

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत।

0: चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।
1: हम

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में।
2: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में, गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? तो बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। बोला गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफी उलझने कम हो जाती है।

आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज। कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं हैं, लेकिन आनंद जी हैं, और है इस जोड़ी का अनूठा संगीत।

0: राजकीय फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लीवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो IBS के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारे जांच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूँ फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
2: हाँ, तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता
1: जी।
2: एक दूसरी बात ये भी हमारे यहाँ हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट, अगर कुछ नहीं ठीक हो तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं, एसिडिटी से किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था IBS, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, 2 से 3 दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द, 1-2 दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए।
1: जी, तो ये आपने बड़ी जरूरी बात कही है और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं। घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था, आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहाँ मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं, क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज फटने लगती है, खराब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है, और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहां से हमारी आवाज निकलती है। स्पेशली जब हम रात को सो जाए, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है। कई पेशेंट्स कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज़ बदल जाती है। तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ENT को जाके देखते हैं, ये गला खराब है। ENT जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहाँ से खाने की पाइप शुरू होती है वहाँ पे काफ़ी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है। तो एसिड रिफ्लक्स से गला खराब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा के गले में कुछ अटका हुआ है, तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स।
1: तो मतलब आवाज की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और बात आवाज की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर ये गाना आप कहें तो हम सुनवाएं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए,
1: सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था, और पेट के अल्सर के हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है?
1: नहीं, आज के ज़माने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं हैं,
0: जी
1: क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयाँ निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के ज़माने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं
0: क्यों हो
1: अल्सर।
0: रहा है?
1: ज़्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयाँ लेते रहते हैं,
0: जी
1: तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते हैं।
0: जी
1: एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीज़न हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे, क्योंकि जो एसिडिटी की दवाइयाँ हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने ज़माने में ये दवाइयाँ नहीं होती थी, तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के ज़माने में अल्सर की सर्जरी इज़ ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
0: जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है। लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खास तौर से?
1: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा।
0: जी
1: कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है,
0: जी
1: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है। काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफ़ी हाई है।
0: जी और एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है? कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं, बहुत टेंशन में, तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
1: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है, सुबह उठते हैं, मोशन होता है, और फिर पेट खाली होता है, फिर पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट दिन मोशन होता है। चूँकि स्लीप साइकिल ख़राब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न ख़राब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन

0: इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज़्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूँ कल रात को, ठीक से सोया हूँ कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैंने नेक्स्ट दिन मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूँ अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
1: तो ये तो बहुत जरूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज्यादा होती है कुछ ऐसा?
0: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट खत्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
1: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
0: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है। जो हमारा पेट इंटेस्टाइन होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं,
1: जी
0: जो हम सिंपल टर्म्स में, देर इज गुड बैक्टीरिया एंड देर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज़्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ज़्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है। तो
1: जी जी
0: बहुत बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज़्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई हैं, गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं
1: जी
0: इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर, बट ऑल्सो इम्प्रूव इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया।
1: जी तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना
0: तो मैं तो
1: कारण?
0: कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही,
1: दही?
0: दही से अच्छा कोई प्रोबायोटिक नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू टेक, यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली।
1: जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, डॉक्टर साहब बताइए कौन सा गाना सुनवाएं?
0: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्ज का, दर्दे दिल दर्दे जिगर, ये गाना
1: क्या
0: मुझे
1: बात
0: बहुत
1: है,
0: पसंद है।
1: आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या, किस तरह की एक्सरसाइज?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगर पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, दवाई नहीं देनी है, हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। तो एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइज है जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज है जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइजेज जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइजेज जो बोलते हैं हम ना, साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है। तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
0: जी बिल्कुल। क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता
1: हाँ
0: है?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और नुकसान डेंजरस होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
0: जी
1: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज्यादा हो उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफी पतले हैं, पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, मेरे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज द मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन एमआरआई, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज द मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
0: जी जी जी और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है? किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत।

0: बट अगर ये इमोशन दोबारा दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम. जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन्स में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है, कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने
1: जी
0: कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटिन एलर्जी. तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है.
1: जी जी और एक बात डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज खास तौर से जो योगा करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
0: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है. पेट की जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं और मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्ने होने के रिस्क होते हैं, पेट बाहर आ जाता है ज़्यादा उल्टा. तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो. अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज़्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज़्यादा होता है.
1: जी तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है
0: बिल्कुल पड़ सकता है.
1: जी, और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के, क्योंकि हर कोई वो कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
0: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है, इसके भी पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है?
1: हाँ
0: बोले हमको खाना पचता नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है. तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है. जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं. तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है. पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ,
1: जी
0: पेशेंट
1: जी
0: का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है. पच नहीं रहा है तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है. तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो. अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ. मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में, स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो
1: जी
0: पानी
1: जी
0: नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल. तो आई थिंक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की, वो कलरफुल होनी चाहिए. मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियाँ हो जाएं, एक रेड हो जाए, एक ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, ज्वार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल.
1: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए मेरे
0: बिल्कुल,
1: ख्याल से।
0: इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाए आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया.
1: तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
0: एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है. ये गाना वाज क्वाइट फेमस
1: जी
0: मेरे स्कूल के टाइम पे
1: जी
0: और
1: क्या
0: काफी
1: बात
0: सुना
1: है
0: है हमने.
1: जी।

0: डॉक्टर साहब, बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी समस्या है, वहां पर एक बात रह गई थी, वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो, या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो
1: हाँ
0: आगे
1: बिल्कुल
0: चलकर।
1: बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से, या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेजाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है, और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था, अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत जरूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैन लीड टू कैंसर्स इन द फूड पाइप।
0: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी
1: हाँ तो
0: दीजिए।
1: बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफ़ी सेम ही है, जिस तरीके से हम देखते हैं जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है।
0: जी
1: अभी काफ़ी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं, हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे अभी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट एंड राइट देख लिया एक सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेते कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो। ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया AI इन एंडोस्कोपी। दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं।

0: हैं, छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर्स मेजर करती है, ये क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है, और जब उसको एसिडिटी लग रही हो रहा है बटन दबाता है और विद इन 24 to 48 आवर्स हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं है वो एसिड रिफ्लक्स हो, वो खाली एक सिम्टम हो सकता है, तो उसको 24 आवर पीएच, मैंने हम पीएच प्रोब बोलते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देर आर मेनी अदर वेज टू डिटेक्ट द एसोफेगस।
1: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी अटकलें लगाने के बजाय। डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस, ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती हैं?
0: तो कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है, कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतड़ी में कुछ इशू है। अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं। जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी है उसको आईबीडी बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें बड़ी आंतरी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन और ब्लीडिंग होता है, तो उसको आईबीडी बोलते हैं। ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस आईबीडी वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर आईबीडी की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है, ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज नॉट रियली अ डिजीज, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली। तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत जरूरी है।
1: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज्यादा बेहतर होता है। और अब डॉक्टर साहब एक गाना सुनते हैं पहले, यहाँ
0: शायद मेरी शादी का ख्याल
1: सुनते हैं डॉक्टर साहब ये गाना।

0: बिल्कुल नहीं, तेरी कसम आऊंगा।
1: अब डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी ये जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
2: तो ये जितनी भी ये बीमारियां, आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती है, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अगर कोई सीख है वो डाइट है, कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं। कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकेंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। आई थिंक न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, के कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा ना लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया, ये क्या समस्या है?
2: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सिर दर्द हो गया है और एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है
1: जी।
2: तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ये पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है। तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन।

0: एंड द माइग्रेन ऑल्सो गोज अवे. तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं. तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है. तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट ली है, मुझे
1: जी
0: इसका जवाब किधर नहीं मिला. ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि
1: जी
0: एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है.
1: जी जी
0: तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये माइग्रेन ना हो, क्योंकि माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हैव हेडेक्स. माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा. नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी हो. अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपने आप हेडेक शुरू हो जाएगी ना. तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, इट्स बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स. इसके लिए
1: जी
0: आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है.
1: जी हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
0: कुछ
1: कहा
0: तो
1: कि
0: है, देर इज सम
1: जी हाँ
0: कोरिलेशन बिटवीन
1: ओके,
0: डाइट, नॉट
1: तो
0: ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स.
1: जी पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही है लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता है,
0: हाँ.
1: तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
0: तो अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, बिकॉज
1: ओके
0: बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिन कैन कॉज एसिडिटी. तो अगर
1: यस
0: आपको एसिडिटी ऑलरेडी है तो
1: हाँ
0: माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ.
1: जी जी जी और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की?
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: या फिर जो लोग नहीं लेते हैं उन्हें भी होता है, तो
0: हाँ.
1: ये
0: तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है. दोनों सेम चीज करते हैं. अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है. अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज़ होता है. एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है. तो ओनली वे हम अल्क कर पाते हैं कि अल्कोहल है नॉन अल्कोहल, पेशेंट को पूछ के, हिस्ट्री के ऊपर. तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए. वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए बिकॉज इट इज अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड अदर ऑर्गन्स. तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे? धूम्रपान, टबैको, सेम चीज. धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो ये प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है. अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड. अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है समथिंग कॉल्ड मेट एएलडी, मतलब जहां पे अल्कोहल भी थोड़ा है, फैट भी थोड़ा है, और दोनों बीमारियां पड़ रही हैं. ये सबसे डेंजरस है बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, आपने दूसरी बीमारी डाली है, तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है. तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल.
1: जी जी डॉक्टर साहब, लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को?
0: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है. तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है हेपेटाइटिस बी का, इसके हम काफी कैंप्स करते हैं. आप एक सादा ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का करो, अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया है तो आपको इसकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए. दिस इज अ ट्रीटेबल कॉज ऑफ लिवर इंजरी, हेपेटाइटिस बी. बाकी और भी वायरसेस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है. ये बेसिकली रेनी सीजन में हमको ज्यादा दिखता है, जब वाटर कंटेमिनेशन होता है, फीकोरल कंटेमिनेशन बोलते हैं, खान पान साफ नहीं होता है, तब ये वायरस होता है, लिवर पे इंजरी करता है पर आके चला जाता है. हेपेटाइटिस ई ज्यादा हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, हेपेटाइटिस ए कैन बी सीन एनी टाइम. एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, ये अभी हम कम कम देखते हैं, फॉरेन में ज्यादा दिखता है, इंडिया में कम दिखता है. ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या कोई नीडल इंजरी से या कभी कभी सेक्सुअली भी होता है. हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है. तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं.

0: हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है, और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है। तो अपने टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो। ये कॉमन इंजरी है लिवर की। तो फैटी लिवर हमने बोला, अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है, अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल है वो तो हम जानते ही, ये होता
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: ये
1: बिल्कुल
0: कॉमन है। वायरसेस कॉमन है, फिर बाकी की जो लिवर की इंजरीज हैं वो काफ़ी रेयर होती हैं।
1: जी।
0: लास्ट चीज़ मैं कहूँगा गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है, उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है। अगर वो लिवर की पथरी स्लिप हो जाए, लिवर के ट्यूब में आके फंस जाए, तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। तो
1: जी
0: ये कॉमन लिवर की बीमारियां हैं, गॉल स्टोन्स, अल्कोहल, फैटी लिवर एंड वायरसेस।
1: जी आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि कई बार जो उल्टी होती है तो क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इस ये भी वजह होती है क्या?
0: बिल्कुल हो सकती है, कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली फैटी फूड खा के, तला हुआ खा के, दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है, एक सोनोग्राफी करेंगे उसमें ये पकड़ा जाएगा आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स है कि नहीं।
1: जी। और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है?
0: नहीं, जरा भी नहीं है। गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें हैं जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, लाइफ
1: जी,
0: नॉर्मल कटते रहती है।
1: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है तो दूर हुई। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो आईबीएस की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है, अमूमन लोगों को ये होता है, ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग, कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या ये?
0: हाँ, ये बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर, तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड, उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए, और मोशन जाते हैं। तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है, तो कई मेरे पेशेंट हैं जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे या
1: जी
0: नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई, कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले, अगर वॉमिटिंग इज अ प्रिडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ, एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ, ताकि
1: जी
0: आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। तो
1: जी
0: बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन्स बट सेंसिटिविटी, दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत।
1: तो इस समय आईबीएस की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को? मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी
0: हाँ
1: या
0: तो
1: कुछ नहीं?
0: नहीं, खा ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि यू कीप वेल हाइड्रेटेड, बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में, कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो, ताकि यू वेल हाइड्रेटेड।
1: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है आईबीएस?
0: एक्चुअली आईबीएस में कुछ नहीं आया होता, आईबीएस इज ऐसा सेंसिटिव थिंग, अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो, तो सारा नॉर्मल होता है। इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग, इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये।
1: अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को, बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
0: चले चलो, ये गाना सुना है, चले चलो
1: चले चलो, लगान का,
0: लगान का।
1: लगान फिल्म का गाना चले चलो।

हार हम अपनी जीत हो कि हार हम बार बार हम बोलो यार हम।

0: डॉक्टर साहब, आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो, तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्याएं हैं।
1: हाँ, तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो बार। सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल जा रहे ये तेल अच्छा है, ये ले ले इससे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो, ये गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है, जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की जरूरत नहीं है। और वी नो कि ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है। वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है। खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिन आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, जब रेगुलेटेड दवाईज हैं, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासीटामोल है, 500 ml पैरासीटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है,
0: बिल्कुल,
1: और
0: स्टीरॉइड भी आ रहा है
1: स्टेरॉइड्स
0: आजकल
1: भी
0: आप
1: आता
0: बता रहे
1: है।
0: हैं।
1: और ऐसी कोई चीज़ आप अपने मुंह में डालोगे और स्वॉलो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट हैज़ टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड। मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देखे, फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन वी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो अभी इजीली मिल जाती है उसके पीछे बहुत इयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल नेचुरोसूटिकल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है। और वर्स्ट कम टू वर्स्ट, हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या हो गए। तो अगेन, बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट। इट इज अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व।
0: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत जरूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
1: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: तो खुशखबरी, कहीं ये ना आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती,
1: रंग तरंग।
0: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

का कलाम। और अब समाज फरमाइए, प्रेम वर्मादानी का ये गीत नीना और राजेंद्र मेहता की आवाज़ों में।

0: जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रंगतरंग कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मधुकर राजस्थानी का लिखा ये गीत, खयाम के संगीत निर्देशन में, आवाज है मोहम्मद रफी की।

आइए अब सुनते हैं पंकज उधास की आवाज में नूर नरवी का कलाम। यह है पंकज उधास की आवाज और नूर नरवी का कलाम।

ये थी राजेंद्र मेहता की आवाज, गुलजार का कलाम। और अब सुनते हैं मिताली सिंह और भूपिंदर सिंह की आवाज में इब्राहिम अश्क का कलाम।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम।

0: आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार रिजवी की गाई ये गजल। शायर हैं ताहिर फराज रामपुरी।

0: ये थी मिताली सिंह की आवाज और रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गीत।
1: न जवानी नल चल दी

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे के क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि चार दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
2: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: नए सेना प्रमुख

0: जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक स्तर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरन ने बताया कि हवाई हमलों में 36 नागरिक मारे गए हैं और 163 अन्य घायल हो गए हैं, साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी नोटिस का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में IOCL ने कहा कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। कुछ ही पलों में कार्यक्रम सुनेंगे यादों की महफिल।

यादों के महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं विधाता फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और किशोर कुमार का गाया हुआ पिघलता आसमान फिल्म का गाना। इन दीवार के बोलों को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो आशा भोसले और शब्बीर कुमार ने गाया है, वर्मा मलिक ने लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने धुन तैयार की है। फिल्म का नाम है राज तिलक।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनते हैं एमजी हशमत का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, संकोच फिल्म का नाम है और आवाज है सुलक्षणा पंडित की।

गुलशन बाबरा का लिखा ये गीत आपने सुना रफू चक्कर फिल्म से, कंचन और शैलेंद्र सिंह की आवाजें थीं। आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में घुंगरू फिल्म का ये गाना।

लीजिए सुनिए, इंदिवर का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ कलाकार फिल्म का गाना। आवाजें सुरेश वाडकर और साधना सरगम की हैं।

लीजिए आप सुनिए मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, प्रोफेसर प्यारे लाल फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। और अब आपको सुनवा रहे हैं इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, मुकेश और कंचन की आवाजें। फिल्म का नाम है पाप और पुण्य।

नमस्कार, शुभ दोपहर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुरीला सफर में। आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। आज की इबारत पढ़कर बहुत सारे संदेश आए हैं। अगर आपने अभी ये इबारत नहीं पढ़ी है तो फेसबुक पेज पर हमने जो इबारत पोस्ट की है वो आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं। रिमझिम में भीगी समंदर की लहरें, उठे झूमके और घड़ी भर को ठहरे। बड़ी दूर से देख आवाज देती, कभी पाँव में डोर बनकर लिपटती। किनारे पे आए, मिले लौट जाए, कभी रेत पर लिखे नामों को छूकर। उधर जा निकलती जहां पत्थरों पर, धड़कते हैं दो दिल एक ही ताल पर। गले उनसे मिलकर, उन्हें प्यार देकर, कोई गीत गाती और फिर लौट जाती। तो आपको बताना है कि कौन से शब्द हैं आज के और उन शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे। बहुत सारे संदेशों में इन शब्दों का भी जिक्र है और गीतों की भी बात हुई है। तो देखते हैं कि आज कौन कौन से गाने लिस्ट से मैच हो रहे हैं आपकी लिस्ट से।

इस मैचिंग के लिए बहुत सारे संदेशों का से गुजरना होगा, और एक संदेश है, कहीं समंदर की लहरों की बातें हैं, कहीं समंदर के कुछ जो एक व्यंजनात्मक रूप से लिखी गई समंदर के बारे में कुछ पंक्तियां हैं। समंदर को जीवन से भी जोड़कर देखा गया है और समंदर के किनारे टहलने की भी कई अनुभव साझा किए गए हैं। बहरहाल ये जो संदेश है इसमें लहरों को सुरीला सफर से सजाया गया है, काव्यात्मक रूप से इस बारे में बात की गई है। समंदर की लहरें केवल पानी का उठना और गिरना नहीं बल्कि प्रकृति की सबसे उत्कृष्ट लय और ऊर्जा का नृत्य हैं। लहरों की अनवरत ध्वनि और निरंतरता किसी ध्यान जैसी अनुभूति देती है। लहरों में एक अद्भुत विरोधाभास होता है, ये जितनी प्रचंड और शक्तिशाली हो सकती हैं उतनी ही कोमल और शांत भी। जीवन में ठहराव नहीं निरंतरता का प्रतीक है ये लहरें, समुद्र का ये अनुशासन ही उसकी असली सुंदरता है। वाह क्या बात है। और एक और संदेश में कहा गया है कि शाद और अवसाद में अवसर दर्शाती और साजे साजे दिलों की हसरतों तरंगों भरी दास्ता बयान करती इश्किया इबारत निसंदेह प्रेमी युगल के प्रेम विवाह के लिए संजीवनी स्वरूप है। लहरों के राजहंस रूपी प्रेमी किनारे रेत पर इंतजार करती प्रेयसी को लुभाने में कामयाब होगी। इश्किया लबोलुआब से सराबोर संगीत में सुरीला सफर का इंतजार रहेगा। तो भाई इंतजार खत्म हो गया है और हमें उम्मीद है कि आप अपने रेडियो के करीब ही हैं, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हों। एक और संदेश में कहा है कि समंदर की लहरों के माध्यम से प्रेमियों के दिलों के धड़कने और उनके आपसी जुड़ाव को दर्शाया गया है। समुंदर की लहरों को इस तरह पेश किया गया है जैसे वे इंसानों की तरह आवाज देती हैं, प्यार करती हैं और गीत गाती हैं। यादों की अमिटता, रेत पर लिखे नामों को लहरों का छूना उस प्रेम और यादों की पवित्रता को दर्शाता है जिन्हें समंदर रूपी प्रकृति सहेज कर रखती है। लहरों का किनारे पर आना, मिलना और फिर लौट जाना जीवन और प्रेम में आने वाले मिलन और वियोग के प्राकृतिक चक्र है, चक्र का प्रतीक है। वह क्या बात है। और एक और संदेश में शब्दों के का जिक्र किया गया है, उन शब्दों का, माय प्लेलिस्ट इज लॉन्गर टुडे होपिंग टू हैव मोर चांसेस, छूकर मेरे मन को रुक जा रात ठहर जा रहे चंदा, इस तरह के कुछ गीत इन्होंने साझा किए हैं। एक और हमारे श्रोता हैं जिन्होंने कहीं से ये गजल हमें भेजी है, रेत पर लिख के मेरा नाम मिटाया ना करो, और बहुत खूबसूरत गजल है। हमें अच्छा लगेगा अगर आप अपनी बात लिखकर भेजें तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज आप अपने साथ लहरें लाई हैं या फिर लहरों के संग आने वाली हैं और हम सब लहरों के साथ कहीं बहुत दूर, हम सबको लहरों के साथ कहीं बहुत दूर बहुत दूर ले जाने वाली हैं, जहां हो सुकून के कुछ पल और हम जी सकें अपने मन के हिसाब से, जहां कोई रोकने टोकने वाला भी ना हो, जो ना करना चाहे वो काम भी ना हो, बस साथ हो सिर्फ लहरें, फिर तो उनके साथ गुनगुनाना अपने आप ही हो जाएगा, नहीं भी आता होगा तो भी। क्या बात है भाई, ये बात तो है ही कि गीत संगीत और जब मनचाह साथ हो या अपने मन की बात हो तो फिर कितना खूबसूरत वक्त गुजरता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो चलिए हम गीतों की शुरुआत करते हैं। रिमझिम शब्द को लेकर बहुत सारे गीतों के कयास आए हैं, तो चलिए एक झलक उन सभी की सुन लेते हैं।

संगीत हैं जो हमने आपकी पसंद से चुने और उनके थोड़े थोड़े अंश आपको सुनवा दिए। हमने ये गीत चुना है और इसे भी बहुत सारे श्रोताओं ने पसंद किया है। लेकिन पहले सवाल पूछ लेते हैं। एक तो आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है और किन कलाकारों पर फिल्माया गया है, और जो सबसे पहला रिमझिम का गीत था उसे एक फीमेल वॉइस में भी आपने सुना होगा, तो बताइए कि वो किसकी आवाज में आपने सुना है। गायिका का नाम आपको बताना है जो सबसे पहला गीत आपने रिमझिम का सुना था।

बड़ा खूबसूरत तराना छेड़ देता है ये गीत। शैलेंद्र का लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ, बिल्कुल सही नाम हमारे श्रोताओं का आया। बहुत बहुत शुक्रिया काला बाजार, देवानंद वहीदा रहमान और रिमझिम गिरे सावन बरसात का जो गाना हमने आपको सुनाया था, सबसे पहला गाना मंजिल फिल्म का लता मंगेशकर की आवाज में। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से प्रॉम्प्ट जो जवाब आते हैं ना, उनमें बहुत कार्यक्रम की को एक गति मिल जाती है, और इस गति के साथ जो संदेश आते हैं वो तो बिल्कुल सोने में सुहागा हो जाते हैं। जैसे हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की भारत में एक अजीब सी तड़प भी है और अपनापन भी, लहरों के माध्यम से प्रेम मिलन विरह और प्रकृति के अद्भुत तालमेल को बयां किया गया है। शब्दों का चयन इतना कोमल और संगीतमय है कि पढ़ते ही मन शांत और रूहानी एहसास से भर जाता है। आंखों के सामने बारिश की बूंदों के बीच नाचती झूमती लहरों का दृश्य सजीव हो उठता है। लहरों का उठना ठहरना और फिर लौट जाना प्रकृति के शाश्वत नियम को दिखाता है। और एक और संदेश में कहा गया है कि कुछ लहरें समंदर से नहीं यादों से उठती हैं, वे जब भी दिल के किनारे आती हैं अपने दूर गए साथी से मिला जाती हैं, उनकी कई यादें याद दिलाकर। एक और संदेश में तो रिमझिम के तराने से लेकर बहुत सारे गीतों का जिक्र हो गया है। पिछली रात से रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात के आगमन से हमारे दिल के समंदर में भीगी भीगी ठंडी ठंडी लहर सी दौड़ रही है। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के क्यों धड़के, आज सुरीले सफर के मिलन की बेला में। जैसे दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज एक है, सांसों के तार पर देश की सुरीली धड़कन के ताल पर जब गीत गाया समंदर की लहरों ने, तब लहरों की तरह यादें टकराती हैं, तूफान उठाती हैं। रेत पर लिखे नाम भले ही मिट जाएं, दिल पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और एक और संदेश में कहा गया है कि विविध भारती के सुरीले सफर में आज समंदर की लहरों के साथ खेलते हैं, ऐसे गीतों का लुत्फ उठाते हैं जिसमें नायक नायिकाएं बेखौफ समंदर किनारे बेतहाशा दौड़ते लहरों के साथ मस्ती करते हैं। कभी रेत पर ताजमहल बनाते हैं तो कभी उसे मिटाकर फिर समंदर के उथले पानी में एक दूसरे को भिगोते लोटपोट हो जा रहे हैं। चलिए इसी से सवाल निकल आया, हमें बताइए कि क्या आपने कभी समंदर की सैर की है, किसी समंदर के किनारे घूमे हैं या वहां से सीपियां इकट्ठी की हैं? अगर ऐसा किया हो तो हमें जरूर बताएं।

कहाँ गए हैं, अलग अलग तटों पर हमारे देश के अलग अलग समुद्री तट हैं जहाँ का पानी और जहाँ के समुद्री किनारे अलग अलग होते हैं, तो हमें ज़रूर बताएं कि आपका वो अनुभव कैसा रहा और कहाँ गए थे आप। और अब ये जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, बताइए पर्दे पर कौन गा रहा है और संगीत किनका है।

भाई कन्याकुमारी की बात की है, जो कि तीन तरह से समुद्र से घिरा है, बहुत रोमांच होता है, ऐसी अनोखी दुनिया होती है। ये हमारे एक श्रोता ने बताया है उस सवाल के जवाब में जो हमने पूछा था कि समुद्र के किनारे आप कहाँ गए हैं। और हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि मुंबई गए हैं। बाकी जवाबों का भी इंतजार हो रहा है, ज़रूर आप लोग कहीं घूमने गए हैं और जल्दी से बताइए। एक श्रोता कह रहे हैं कि आपने जैसे ही रिमझिम के तराने छेड़े, वैसे ही हमारे यहाँ भी रिमझिम फुहारे पड़ने लगी हैं, मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। वाह क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं हम तो दीघा पश्चिम बंगाल गए थे। अब दूसरे सवाल की बारी, वैजयंती माला फिल्म मधुमती, घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, ये जो गाना भी आपने सुना, सलील चौधरी का संगीत निर्देशन था, ये जवाब भी आ गया है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथियों ने बताया है कि ना बाबा मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है, तो मैं जयपुर से ना अजमेर नाव में बैठी ना जल महल और पानी से दूर ही रहती हूँ। ओहो अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पानी का डर जो है वो बहुत सी चीज़ों से दूर रहना के लिए मजबूर कर देता है। आप ये बताइए कि समुद्र के किनारे बहने वाली हवाओं का भी एक बड़ा खास अहम भूमिका होती है, तो क्या कभी उन हवाओं के साथ आपकी कुछ मुलाकात हुई है, जो तेज तेज हवाएं बहती हैं बारिश के समय में, अगर

याद हो तो वो जरूर बताएं। और हाँ, अभी जिन श्रोताओं ने नहीं बताया है कि वो किस समुद्र के किनारे टहले हैं या क्या बनाया है उन्होंने, जो घरौंदे बनते हैं उन घरौंदों को कई बार बच्चे भी बनाते हैं, और आजकल तो बहुत सुंदर सा सेट भी मिलता है बच्चों के उन घरौंदों को बनाने वाला, वो अगर सेट किसी बच्चे को गिफ्ट किया हो तो ये भी बताएं। अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को सुनने के लिए आपको बताना होगा कि ये गाना किस फिल्म का है। संदेशों की बात करें तो हमारे एक श्रोता ने बताया कि एक और रिमझिम का गाना याद दिला दिया, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, लता मंगेशकर की आवाज। वैसे तो रिमझिम शब्द वाला पहला सुना गीत मराठी है। रिमझिम पाउस पड़े सारखा, यमुनेला हुपूर चढ़े, पाणीच पाणी चहुड़के चहुकड़े। वाह, क्या बात है। और ये एक और श्रोता ने कहा है कि रिमझिम के तराने की गीत मालाई बुन रहे हैं और सभी मुखड़े उम्मीद के अनुसार, मंजिल ढूंढता गाना शुरू हुआ और काला बाजार पर रुक गया। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि सागर की अपनी शांत गुफाएं हैं, गहरी शांत और एकांत। यद्यपि लहरों में उग्रता हो लेकिन उसके नीचे कोई शांति नहीं है। शायद कोई टाइपो एरर हुई है, अशांति लिखते हुए इन्होंने अशांति लिखना चाहा होगा। एक और श्रोता ने कहा है कि वैसे हम अपनी कुछ दिन पहले की एक बात बताते हैं, आपके साथ साथ सभी हंसेंगे सुनकर। तो हुआ यूं कि हमारी बेटी ने कुछ पंक्ति लिखकर अपनी एक पोस्ट डाली स्टेटस पर, समुद्र के किनारे की पिक के साथ। तो हमने उसे लाइक किया और लिखा कि हम लिखते तो कुछ ऐसा लिखते। तो जवाब में उसने लिखा, आप दिल से सोचती हैं और हम दिमाग से। फिर हमने लिखा, अरे नहीं, हम विविध भारती सुनते हैं ना। तो उसका रिप्लाई, सारा क्रेडिट मम्मी ने विविध भारती को दे दिया। फिर उसने ये बात सब दोस्तों को बताई, सब इतना हंसे ऑफिस में। तो सोचो, एक छोटी सी बात ने कितनों को हंसाया। बस यही तो हम चाहते हैं, सब खूब हंसे, वरना परेशानियां तो सबके साथ हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि जीवन दर्शन समंदर की भांति ही गहरा ही नहीं अपितु रहस्यमय भी है। भले ही हम उसके अंदर अपने कौशल विकास से केबल बिछाकर पूरी दुनिया को ही मुट्ठी में भर लेने की होड़ में लगे हुए हैं, फिर भी ये समंदर अब भी रहस्यमय ही है। क्योंकि बहुतेरे तो किनारे के सीप घोंगों से ही खुश हो जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक कुशल गोताखोर ही समंदर में गोते लगाते हुए उसमें छुपे जीवन दर्शन स्वरूप हीरे मोतियों तक अपनी पहुंच बना पाते हैं। आगे भी लिखा है, लेकिन यहीं से एक सवाल का जन्म होता है, और वो सवाल ये है कि इस लाइन पर एक बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा है कि गोताखोर लंबी जब अंदर तक जाते हैं समुद्र में, तभी वो हीरे मोतियों को पा लेते हैं। तो एक दोहा है, अगर वो दोहा याद आ रहा हो तो वो भी हमें बताएं, और इस फिल्म का नाम बताएं जो गीत आप सुन रहे हैं।

बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए। एक तोहफे की तरह आया ये जवाब। और मुकेश और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, इंदीवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, समंदर की भी बातें हमारे साथियों ने बताई हैं। वैसे एक सवाल आ रहा है मन में कि तोहफों को चुनते वक्त सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान रखा जाता है जेब के अलावा? ये जो हमारे साथियों ने बताया है समुद्र की यात्रा के बारे में, तो एक श्रोता कह रहे हैं कि हम तो समुद्र कनाडा में इन्होंने देखा था कई बार, और बहुत देर तक वहाँ बैठकर आती जाती लहर को देखा, जो बस यही कह रही थी काश हमारे साथी को कुछ जीवन और मिल जाता तो आज वो भी हमारे साथ इस प्यारे से नज़ारे को देख पाते। पर बड़ी मस्ती की छोटी सी अपनी परी के साथ छोटे छोटे पत्थर, रंग बिरंगे पत्थर पानी में डाले और पानी में पैर डालकर बैठे रहे। कन्याकुमारी दीघा छूट गया लिखने में, ऐसा हमारे एक श्रोता कहते हैं। और मुंबई में तो अक्सर ही जाना होता है, वहां चौपाटी पर कई बार गए, चेन्नई में भी जाना हुआ, कन्याकुमारी भी गए हैं, ये हमारे एक और श्रोता ने बताया है। एक और श्रोता कह रही है कि वैसे तो हमारा शहर समुद्र के पास ही है, अक्सर हम वहां जाया करते हैं, डुमस बीच, सवाली बीच और गोवा दो बार गए, पर सबसे अलौकिक अनुभव हमें धनुषकोडी और कन्याकुमारी का रहा। दक्षिण भारत की यात्रा का अनुभव बेजोड़ था। क्या बात है, मुंबई के जुहू बीच दो तीन बार, अक्सा बीच और गुरई बीच का जिक्र किया है हमारे एक श्रोता ने। द्वारकाधीश और सोमनाथ गया हूँ समुंदर के पास, ये हमारे एक और श्रोता बता रहे हैं। एक श्रोता ने साझा किया है एक दुर्घटना होते होते बचने का जो अनुभव था इनका। हम लोग पूरा ग्रुप करीब 80 लोग उड़ीसा गए हुए थे, वहां पर समंदर की सैर करते हुए अचानक समंदर में तूफान आ गया और हमारी बोट गोते खाने लगी। तभी एक अन्य बोट वाले ने तूफान के सामने अपनी बोट लगाकर हमारी बोट को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जुहू चौपाटी मरीन ड्राइव दोनों जगह पर दो तीन बार गई हूं, पर वहां का पानी जो अजीब सा पानी की जो अजीब सी गंध होती है, मैं अपने को अच्छा महसूस नहीं कर पाती, इसलिए मैं पानी के किनारे पर जाना पसंद नहीं करती हूं। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि पुरी के समुद्र में रस्सी पकड़कर लहरों का आनंद ले रहे थे, पर एक बहुत बड़ी लहर ने उठाकर पटक दिया और मोबाइल में पानी लग गया, थोड़ी सी लापरवाही की बड़ी सजा मिल गई। और समझौता फिल्म का ये गाना हमारे साथियों ने बताया, साथ ही अनिल धवन और शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम का जिक्र हो गया। अब संदेशों की बात करें तो और भी कई संदेश आए हैं। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि मुंबई की कुछ बारिश आप ऑनलाइन ट्रांसफर करके हमारे शहर अजमेर में भेज दें प्लीज, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अभी यहाँ तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑफिस के बाहर तेज धूप है। ओहो, ये तो बहुत खतरनाक है। चलिए जल्दी हम दुआ करते हैं बारिश आएगी। एक और श्रोता कह रहे हैं कि

वीबीएस सर्विस मुंबई में मानसून के आगमन के साथ पानी बरसना शुरू हो गया। ऐसे में समंदर किनारे हवाओं के साथ लहरें अटखेलियां करती नजर आ रही हैं। पहली रिमझिम बारिश में धरती को छूती हुई पानी की बूंदें मिट्टी की सूंधी खुशबू बिखेरती हैं, तो वहीं समंदर किनारे किसी चट्टान पर बैठकर बीती यादें मस्तिष्क को दूसरी ही दुनिया में ले जाती हैं। और बताया है कि समुद्री लहरों के आसपास फिल्माए गए गाने बच सकते हैं। एक और संदेश में कहा गया, शांत लहर में कुछ खामोशियां भी गीत होती हैं, उन्हें सुनने के लिए कान नहीं बस समझने वाला दिल होना चाहिए। क्या बात है। चलिए अब इसी बात पर अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें ये बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और गीतकार कौन है।

आवाज पर ये गाना तो हो गया और इसके साथ ही बहुत सारी आवाजें, भावनाएं आवाज बनकर हम तक पहुंच गई हैं। सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो पानी से बड़ा डर लगता है, मैं तो तालाब में भी नहाता हूं तो साथ में बाल्टी या मग ले जाता हूँ, समुद्र में जाना तो दूर की बात है। वैसे हमारे साथियों ने ये जरूर बता दिया जो हमने एक दोहे का जिक्र किया था कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न दरा रहा किनारे बैठ। कबीर दास की का ये दोहा।

हमारे साथियों ने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रही हैं कि समंदर से बड़ा गहरा नाता है मेरा, क्योंकि समंदर के काफी नजदीक रहती हूँ। अपनी हर खुशी के पल में समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं, टहलना हो तो भी वहीं जाते हैं। लहरों से अपनी दोस्ती है, समंदर की हवाओं से यारी है अपनी। क्या बात है, वैसे बहुत बातें करती हैं हवाएं जब आप समंदर के किनारे हो। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गुजरात के दमन दीव बीच और सोमनाथ विजाग बीच, चेन्नई के मरीना बीच और रामेश्वरम के धनुषकोडी और कन्याकुमारी केरला के कोवलम बीच की सैर करके आई हूं, पर जो चौपाटी की बात है वो सबसे निराली है, क्योंकि उसमें बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया है कि रेत पर नाम लिखने का किस्सा, कि बचपन इनका मुंबई में ही गुजरा था, समुद्र से गहरा लगाव है। जब भी हम मुंबई आते हैं तो जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी या अन्य बीचेस में जरूर जाते हैं। धर्मपत्नी जब बच्चों के साथ होती हैं तो मैं चुपके से हर बार रेत पर दिल का शेप बनाता हूं, धर्मपत्नी का नाम लिखकर आई लव यू भी लिखता हूं और सबको बुलाता हूं, तो धर्मपत्नी और बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट ही मेरा तोहफा होता है और वहां का वीडियो भी सेव करके रखता हूं। हां, हम यही बात कहने वाले थे कि ऐसे नजारों की तो फोटो तुरंत खींच लेनी चाहिए। क्या बात है। एक और श्रोता कह रही हैं कि मैं वो खुशनसीब हूं जो समंदर के किनारे रहती हूं। मेरा बेटा रोज शाम को खिलौने लेकर रेती में खेलते खेलते बड़ा हुआ है। मैं भी सीपियां इकट्ठा करके उनसे अलग अलग डेकोरेटिव चीजें बनाती थी, लेकिन अब समंदर किनारे बहुत गंदगी रहती है, सीपियां मिलना भी बंद हो गया है। सच में ये एक बहुत ही दुखद बात है, और इसलिए समंदर को साफ रखें। अगर समंदर के किनारे आप जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मुंबई, चेन्नई, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी जाना हुआ, हर बार का रोमांच अलग अलग रहा। मेरी बिटिया का बेटा पुरी में पिछले साल हमारे साथ था, उसके साथ समंदर के किनारे लहरों से खेलते खेलते वो अचानक किसी लहर के साथ बह निकला। बस थोड़ी दूर जाते ही हमने लपक कर उसे पकड़ लिया, वो तो मजे लेता रहा पर हम सबके तो हाथ पैर जम से गए थे। कन्याकुमारी में सनराइज की वो झलक का अनुभव इतना सुंदर और आत्मिक अनुभव से भरा हुआ है, वो नजारा वीडियो में आज तक कैद है, जिसे हम यदा कदा देखते रहते हैं। एक गीत सुलक्षणा पंडित का गाया हुआ, तू ही सागर है तू ही किनारा। और अब वो सवाल जो हमने पूछा था, प्रेम गीत फिल्म का गाना अनीता रास का जिक्र किया, इंदिवर का लिखा हुआ ये गीत था, ये भी हमारे साथियों ने बता दिया। और अब हम अगले गाने की तरफ चलें, उसके पहले एक संदेश है। प्रकृति और मनुष्य आदिकाल से सहचर हैं, जब रिमझिम बारिश की बूंदें समंदर की लहरों पर पड़ती हैं तो मानो बिछड़े हुए प्रेमियों का मिलन हो रहा हो। यह दृश्य और अदृश्य का मिलना मानव मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस माहौल में मनुष्य के भीतर की तार्किकता मौन हो जाती है और संवेदनशीलता जागृत हो जाती है। क्या बात है। एक और संदेश में कहा है कि सुख का सुंदर चैतन्य आत्मा है, उसमें से आनंद की तरंगे उठती हैं, खुशी की लहरें उठती हैं और फिर उसी चैतन्य समुद्र में समाती भी हैं। एक और श्रोता ने कविता साझा की है, कहीं पढ़ी हुई ये कविता साझा की है इन्होंने। बादल बरसे धुल गई मन पर बैठी धूल, सब कुछ अपने हो गए समंदर नाव और मस्तूल, खिली जुलाई खुल गया बारिश का स्कूल, बस्ता लेकर सज रहे गुलमोहर के फूल। क्या बात है। तो चलिए अब अगले गीत की बारी है, बताइए कि गीत संगीत किनका है और फिल्म में कौन से कलाकार हैं।

भाई, हमारे श्रोताओं ने शशि कपूर और मुमताज का तो जिक्र किया, चोर मचाए शोर का नाम भी बता दिया, लेकिन गीत संगीत नहीं बताया। चलिए हम बता देते हैं, गीत संगीत रविंद्र जैन का था। और एक श्रोता ने बताया है कि चेन्नई के मरीना बीच की वे यादें केवल एक शहर की याद नहीं बल्कि परिवार के साथ बिताए गए उन अनमोल पलों की धरोहर हैं जिन्हें याद करके आज भी मन मुस्कुरा उठता है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि एक बार गोवा गए थे तो उनका फोन जो था पानी में गिर गया और उसके बाद सैंड में दब गया, ढूंढने पर भी नहीं मिला, इनका ट्रिप खराब हो गया। वो वैसे बहुत एहतियात के साथ इस दौरान रहना पड़ता है। समुंदर कई बार आपके साथ अटखेलियां करते करते कुछ ऐसा कर जाता है कि आपने उम्मीद भी नहीं की होती है। एक और श्रोता ने बताया कि भोपाल में आज सुबह से ही बादल और हल्की बारिश का सिलसिला चल रहा है, मौसम बहुत सुहाना है। कभी बरसात के मौसम में आप यहाँ आए तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। क्या बात है, हम दुआ करेंगे कि हम जरूर आए। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि सूरत में बारिश हो गई, कल रात 10:30 बजे के बाद शुरू हुई, सुबह 10 बजे तक जारी थी, लेकिन मैं राजस्थान में हूं, अभी जमकर बारिश नहीं हुई। एक और श्रोता ने अंडमान निकोबार जाते हुए बे ऑफ बंगाल समंदर हवाई जहाज से 2.5 घंटे का सफर पूरा किया, ये बताया है। नीचे देखो तो नीला समंदर था, मन में डर लग रहा था लेकिन थ्रिल भी लग रहा था। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप लोग मुंबई में पानी की बारिश से भीग रहे हैं, सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ बनारस में भी पानी से भीग रहे हैं लेकिन सेल्फ सर्विस पसीने से, दुआ कीजिए जी। बिल्कुल, हम तो हाथ जोड़कर दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से ये बादल पहुंचे। मेघदूतों को के बारे में आपने सुना है ना, हमने मेघदूत से कह दिया है कि जल्द से जल्द हमारे सभी साथियों तक पहुंचे। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा के समुद्र तटों को छोड़कर शेष सभी समुद्र तटों पर हो आए हैं, यहाँ तक कि गंगा सागर भी हो आए हैं। क्या बात है। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि अभी इन्होंने वृंदावन की यात्रा की और यमुना की सैर की, सागर के साथ पूरा भारत देखा, दादर की चौपाटी याद आती है। अच्छा, वैसे समुद्र जो है वो कई जगह बड़ा रिझाता है और कई जगह चेतावनी भी देता है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रामेश्वरम के धनुषकोडी और कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद स्मारक पर तेज हवाओं का सामना करना पड़ा था। और एक और श्रोता ने बताया कि हमारे शहर कटक से पूरी नजदीक होने के कारण अक्सर जब मूड किया चल दिए समंदर की सैर को। क्या बात है। और अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गीत को सुनिए और हमें ये बताइए कि ये किस नायिका पर फिल्म आया।

हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हेर आई शब्द का मतलब बुंदेलखंडी में ढूंढ आई। वैसे हेराई यहाँ पर प्रयोग हुआ है खो आई। और हमारे श्रोताओं ने तुरंत जवाब दिया कि अभिमान फिल्म का गाना नायिका जया भादुड़ी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मजरू दादा की रचना, सचिन दा का संगीत, ऐसा हमारे एक और साथी बता रहे हैं। और मुंबई में अरब सागर पर बना हुआ सीलिंग देखने जाना है एक श्रोता की ये ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश उनकी ये ख्वाहिश जल्दी से जल्दी पूरी हो, हम तो यही दुआ करेंगे। एक श्रोता ने बताया है कि हम लोग समंदर के किनारे, हमने काम भी किया है और अच्छा घूमे भी हैं। एक बार नीलोफर तूफान भी आया था, दो बार रहा, दोनों बार तूफान था। एक तीन चार लगातार लाइट भी नहीं थी, फिर भी आज भी किनारे रहने की बहुत इच्छुक हूँ। एक और श्रोता ने एक दोहा साझा किया है समुद्र तट के वर्णन के बारे में। रामचरितमानस का दोहा है, बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारीस, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। समुद्र के ये 10 नाम हैं जो वाकई बड़ी खूबसूरती से तुलसीदास जी ने पिरोए हैं इस दोहे में। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि बदलते मौसम में जब रिमझिम की बूंदें बरसती हैं तो रेत पर लिखे वो अधूरे नाम भी भीग जाते हैं, लेकिन जहां समंदर की लहरें इन पथरीली चट्टानों से टकराती हैं, वहां आज भी दो दिल एक ताल पर धड़कते हैं, मानो

कह रही हूँ कि कुछ सफ़र कभी ख़त्म नहीं होते। एक और श्रोता ने कहा है कि एक सुंदर स्वप्निल काव्य शिल्प यानी आज की इबारत, समुद्र की लहरों पर जो बिखरा रही है रिमझिम की दौलत, क्या बात है। कल कल फेनिल सागर लहरें किनारे को जो छुएं, धड़कते प्रेमी दो दिलों पर प्रणय रस वो छिटकाएं, आते जाते मधुर सुरीले प्रेम गीत वो गुनगुनाएं, और कुछ गाने भी इन्होंने साझा किए हैं। और एक और श्रोता ने कहा है कि सागर के अनंत विस्तार में उठती गिरती ये लहरें कभी शांत कभी उग्र, जैसे जिंदगी की ही कोई अनकही दास्तान कहें। कुछ दूर क्षितिज में उठकर किनारों को छूकर ये बिखर जाती हैं, हार नहीं मानती, बस एक बार एक नया हौसला लेकर आती हैं। कभी थपेड़ों से चुभती हैं तो कभी मखमली स्पर्श सी हो जाती हैं। लहरें जिंदगी के सफर में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। हर लहर हमें ये बताती है कि गिरना तो बस उठने की तैयारी है, ठहरना नहीं, निरंतर बहते जाना ही इस बहते हुए जीवन की बाजी है। क्या बात है। और अब ये गीत सुनिए और बताइए स्वर किनका है,

लता जी और भूपेंद्र सिंह, ये हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है। फिल्म किनारा बहुत गंभीर फिल्म और बहुत सारे श्रोताओं ने जिक्र किया है। लता दीदी बिल्कुल सही, इनकी आवाज़ ही पहचान है। और अभिमान फिल्म के गाने के लिए भी जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, एसडी बर्मन का जिक्र हुआ है। संदेश बहुत सारे हैं और मुझे लगता है कि मुझे सारे संदेश कैसे पढ़ने होंगे। सागर के अनंत विस्तार में उठती गिरती ये लहरें, कभी शांत कभी उग्र, जैसे जिंदगी की ही कोई

कही दास्तान कहीं। ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक और श्रोता ने कहा है कि आज शायद दरिया समंदर नदियों की उनके अविरत बहती लहरों का जिक्र होगा, बिना भीगे मन को प्रसन्न करने वाली लहरों का वो अनहद संगीत शोरगुल में भी कर्णप्रिय लगता है। मैं घंटों तक समंदर के किनारों से चलता हुआ लहरों का आनंद लेता हूं, थकान मिट जाती है, शाम को ढलते हुए सूरज की किरणों का दृश्य मनोहर होता है। और इन्होंने कुछ गीत भी लिखे हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि सागर परम चेतना है, जिसमें बहुत गंभीर स्थायित्व और गहराई है, और उसकी गहराई ज्ञान का प्रतीक है। लहरें चंचलता, भाव और उमंग को दर्शाती हैं, जो कुछ कुछ अहंकार का रूप लगती हैं। मानो ये कहना चाहती हैं कि उन्होंने ही सागर का निर्माण किया है, यथार्थ में तो वो सागर का अंश मात्र ही हैं। काफी गहरा संदेश है ये। और अब ये गीत सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के मित्र की भूमिका किन्होंने निभाई है।

हमारे श्रोताओं ने कहा है, जवाब बिल्कुल सही दिया है। अमिताभ बच्चन के मित्र हैं अमजद खान, किशन और बिशन। और एक और श्रोता कह रहे हैं

की कॉलेज काल की ये फिल्म है। एक और श्रोता ने कहा है कि किशन चाचा के अमजद खान ने ये गीत गाना, याराना के संगीत राजेश रोशन का संगीत, इन्होंने ये लिखा है। और एक और श्रोता ने अमजद खान उर्फ गब्बर सिंह को याद किया है। एक संदेश है कि आज सोशल मीडिया दिवस है। सोशल मीडिया ऐसा मंच जहां व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से विचार रख सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है। हमें चलिए आपके विचारों के साथ हमने आज का ये कार्यक्रम का ये सफर तय किया, सुरीला सफर, और अब इस कार्यक्रम को यहीं पर दे रहे हैं विराम। तो दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: While the Nifty dipped 9 points to 23,937 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Eurobank launches UPI-based remittance service from Greece to India. Commerce Minister Piyush Goyal calls it a milestone in India's digital payments expansion. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi and four states. India reaffirms strong support for Financial Action Task Force after Pakistan criticizes grey list monitoring by agency. Uncertainty looms over US and Iran peace negotiations as Tehran rejects US President Trump's claim of meeting in Doha. And Germany knocked out of 2026 FIFA World Cup after facing defeat from Paraguay in a 4-3 penalty shootout. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम यूरोबैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश बिहार मध्य महाराष्ट्र कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोबैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से

0: वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।

0: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलट फेर करते हुए

0: जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनते हैं महल फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। आनंद बख्शी का लिखा गीत है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: फिल्म तपस्या का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आरती मुखर्जी का गाया हुआ। एमजी हशमत के बोल थे और रविंद्र जैन का संगीत था।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45

0: मिनट सिर्फ विविध भारती पर।
1: आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मेरा साया फिल्म का ये सदाबहार नगमा। राजा मेहंदी अली खान के बोलों को संगीत से सवारा है मदन मोहन ने।

0: उनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वासना फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, साहिल लुधियानवी के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति जब जब फूल खिले फिल्म से, मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजें हैं, आनंद बख्शी का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

इस गीत के साथ ही अब आज का सदा बहार नगमे कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: की सहेली
1: सभी सखी सहेलियों और सखाओं को राजुल का नमस्कार और साथ में है सोनाली, आपको भी नमस्कार।
2: राजुल जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। क्या हाल चाल है राजुल जी?
1: बस बढ़िया है, आप सुनाइए कैसे हैं?
2: मैं भी बहुत मजे में हूँ। और ये जो बारिश है ना,
1: हाँ,
2: ये किसी छोटे नटखट बच्चे की तरह हो गई है, बीच में से झमाझम बरस जाती है और फिर चुपचाप से छुप जाती है, तो इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो हम फिर परेशान हो जाते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो फिर से झमाझम बारिश हो जाती है।
1: तो ये कहो ना कि दरअसल ये जो बारिश है वो आपको परेशान नहीं देख सकती, बस जैसे ही परेशान देखती है कि अरे सोनाली परेशान हो रही, तुरंत आ जाती है। वैसे एक बात बताएं कि हमारे वो मित्र जो कि हमसे दूर हैं, जहाँ पे अभी बारिश नहीं शुरू हुई है, उनके लिए ये चीज बड़ी ही सुन के उनको बहुत वो होता है कि यहाँ तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और बारिश तो हो नहीं रही है, तो उनको ये बात सुन के बड़ा ही अजीब सा लगता है। लेकिन भाई जहाँ बारिश हो रही है और जहाँ बारिश नहीं हो रही है, वहां पर भी बारिश शुरू हो जाए हम तो यही कहेंगे,
3: बस इंतजार करना जरूरी है क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मीठा होता है। और इसके साथ ही साथ एक बात ये है कि आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं ना, उसमें जो बातें हैं वो बिल्कुल रिमझिम की तरह बरसती हुई एकदम शांत कर देने वाली बातें हैं। जैसे कि हम आज बात करेंगे बुजुर्गों के अकेलेपन के बारे में।
3: अकेलापन जो है ना, ये एक ऐसी अवस्था है जो बहुत परेशान कर देती है, पर जो घर वाले हैं उनकी थोड़ी जिम्मेदारी है कि उनके जीवन में सुकून के पल आए, तो उनसे मिलजुल

0: करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें अपने अपने साथ शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो बुजुर्गों का अकेलापन ये एक विषय है, साथ ही जैसे मैंने बच्चों का जिक्र किया तो बातें हल्की फुल्की, तो इसमें छोटे बच्चों की शरारतें, तो छोटे बच्चे जो इतने शरारती होते हैं, तो बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखे भी हैं, पर उन्होंने आम तौर पर बच्चे शरारती होते हैं इस बारे में लिखा है। पर आपके घर में भी अगर शरारती बच्चे हैं तो उन्होंने क्या शरारती की है? कभी कभी ऐसा था ना राजुल जी कि उन्होंने किसी कुर्सी में है ना अपना सिर फंसा लिया है,
1: हाँ
0: या फिर उन्होंने जो सीढ़ी के बगल में जो ग्रिल लगी होती है उसमें अपना पैर फंसा लिया है, या फिर बहुत सारी कोल्ड क्रीम है वो सर में लगा ली है, लिपस्टिक मम्मी
1: एक
0: के
1: एक संदेश मैंने ऐसा पढ़ा था कि उसने खूब सारी कोल्ड क्रीम पोत ली थी।
0: हाँ, तो
1: तो
0: ऐसी शरारतें होती है, कभी कभी हम परेशान भी हो जाते
1: अरे
0: हैं।
1: कुछ बच्चे तो वो जो रसोई के बर्तनों से खेलते हैं,
0: हाँ
1: और उसके बाद पता चला कि बर्तन तो आप ढूंढ रहे हैं, उस समय चिमटा ढूंढ रहे हैं या कुछ ढूंढ रहे हैं, और वो
0: उनके
1: पता चला
0: खिलौने में
1: खिलौने की बास्केट में पड़ा हुआ है।
0: और कभी कभी बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं जो हमें तकलीफ में ले जाते हैं, जैसे कि पैसा निगल लिया है, सिक्का
1: हाँ
0: निगल लेते हैं। तो इस तरह की शरारतें आपके घर में क्या हुई है वो हमें लिखकर भेजिए। साथ ही उद्यमी महिला के बारे में हम जानकारी देते हैं हर मंगलवार को, तो आज हमने चुना है अदिति गुप्ता को, और साथ ही मुहावरों की दुनिया, इसमें पानी पानी होना।
1: ऊपर से पानी पानी हो रहा है आसमान, और हम पानी पानी होने की बात करेंगे जब स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। और आज हम छोटे बच्चों की शरारतों के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो मतलब
0: जी
1: कई बार स्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कि उनकी शरारतों के सामने वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि हम पानी पानी हो जाते
0: माता
1: हैं।
0: पिता पानी पानी हो जाओ, यानी यूं कह लीजिए राजुल जी कि वो हमारी पोल खोल देते हैं
1: पोल
0: सबके।
1: खोल देते हैं, सही बात है। वैसे ये सब जो बातें होती हैं ना, इनके बीच में अगर थोड़ा थोड़ा गीत भी चलता रहे
0: तो मजा आ
1: तो
0: जाता है।
1: मजा आ जाता है।
0: सुनते हैं गीत।

0: भाई सोनाली अपनी सवारी तो चल दी है और चलते चलते पहुंच गई है वहां पर जहां पर हम उद्यमी महिला के बारे में बताते हैं।
1: यानी झारखंड पहुंच गए आप।
0: हाँ।
1: तो झारखंड से है अदिति गुप्ता, जो भारत की उन प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है जिन्होंने महामारी से जुड़ी हुई झिझक और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कहते हैं, महामारी कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, इस बारे में लोग खुलकर नहीं बात करते।
0: टैबू है ये एक, और इस बारे में ज्यादातर लोग खामोश रहना, एक जमाना था जब नहीं बताया जाता था, कहते भी नहीं थे। उन्होंने ही महिलाओं और किशोरियों के मासिक धर्म और स्वच्छता जागरूकता पर काम किया और इसे शिक्षा और संवाद का विषय बताया। मतलब ये शर्माने की, घबराने की, मुंह छिपाने की या सबसे कोने में बैठकर की बात नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर के प्रति जागृत रहने की, सचेत रहने की और इससे जुड़ी जितनी सतर्कताएं हैं उन्हें इस्तेमाल में लाने की चीज है, ये बताने वाली हैं अदिति गुप्ता। बाकी बहुत बड़ा काम है
1: और ये तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है ना। और महिलाओं को यानी बच्चियों को ये हम उस बारे में डरा देते हैं या कुछ बुरा बुरा कह देते हैं, बल्कि उन्हें इस बारे में बताना चाहिए कि जब पीरियड्स आते हैं तभी कोई महिला माँ बन सकती है। तो ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, बल्कि हम उसे कहते हैं अभिशाप समझ बैठते हैं कि अरे क्या हमारे नसीब में है, पर उसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे अंदाज के साथ अगर हम बच्चियों को समझाएं तो ये बहुत वरदान साबित तो हो ही चुका है, तो उसे हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं
0: और शरीर की एक आवश्यक क्रिया है
1: जी। तो अदिति गुप्ता का जन्म झारखंड में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने देखा कि कई लड़कियां मासिक धर्म को लेकर सही जानकारी के अभाव और सामाजिक संकोच का सामना करती है और इस विषय पर घर और समाज में खुलकर बात नहीं की जाती, जिसके कारण कई सारी लड़कियों में डर और भ्रम पैदा हो जाता था।
0: और अपने जीवन के इन्हीं अनुभवों से अदिति को ये समझ में आया कि केवल चुप रहने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि सही जानकारी से और इस बारे में बात करके, इस बारे में जानकारी पहुंचा कर ही बदलाव लाया जा सकता है। वैसे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से डिजाइन की शिक्षा प्राप्त की,
1: लेकिन उनकी रुचि केवल करियर बनाने तक सीमित नहीं रही राजुल जी, बल्कि वे समाज की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनका समाधान खोजने में विश्वास रखती थी और इसी के मद्देनजर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया नामक कॉमिक बुक की शुरुआत की।
0: अपने पति तुरहिन पाल के साथ मिलकर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य था कि लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में सरल भाषा में वैज्ञानिक और सही जानकारी मिल सके।
1: अब सरल भाषा बच्चों के लिए यानी छोटी बच्चियों के लिए कॉमिक से बढ़कर क्या
0: होगी, ये बहुत अच्छी पहल है
1: जी। तो उन्होंने कॉमिक बुक, चित्रों और आसान तरीके से समझाने वाली सामग्री का उपयोग किया ताकि किशोरियां बिना डर बिना झिझक के इस विषय को समझ सके।
0: और इनके प्रयासों से कई परिवारों और स्कूलों में इस विषय पर बातचीत को बढ़ावा मिला। अदिति ने यह संदेश दिया कि स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर जानकारी छिपाने के बजाय जागरूकता फैलानी चाहिए
1: जी। और उनका काम केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाज को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि किसी भी समस्या को समझने और हल करने के लिए संवाद का होना कितना जरूरी है।
0: बिल्कुल। और अदिति गुप्ता को उनके सामाजिक कार्यों के लिए कई मंचों पर सम्मान मिला। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों में अंडर 30 की सूची में स्थान मिला और वो बीबीसी की प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी शामिल रही।
1: और अदिति गुप्ता का जीवन बताता है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए किसी बड़े पद की आवश्यकता नहीं होती, एक छोटी सी समस्या को गंभीरता से समझकर सही दिशा में प्रयास करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और अदिति गुप्ता ने एक ऐसे विषय पर आवाज उठाई है राजुल जी, जिस पर लोग चुप रहते थे, उनकी सोच ने चुप्पी को जागरूकता में बदल दिया।
0: और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जागरूकता आई तो कम से कम बच्चियों में ये एक विश्वास आया, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी भी ये होता है कि इन दिनों ये छूना नहीं है या दूर रहना है, या बहुत सारे घरों में अगर बेटे भी हैं तो ये बताया जाता है कि अभी ये गंदी हो गई है
1: या चिड़िया ने छू लिया।
0: हाँ, तो इस तरह की बातें सुन के बच्चों बेटों के मन में

0: पहले से बात आती है कि ये गंदी होती है, ये गंदी, मैं गंदा नहीं होता हूँ,
1: ये गंदी
0: तो
1: है।
0: एक चीज वो जो वैषम्य पैदा होता है बेटे और, हाँ, वो भी एक उन्होंने दूर करने की कोशिश की है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इस विषय पर बातचीत होने लगी है। अब देखो ना, हमारे कार्यक्रम में एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है,
1: तो लेते हैं ब्रेक।

0: तो सोनाली, पूरा हुआ अंतराल और हम लौट आए हैं। विषय हम लोग बहुत गंभीर था जिस पर बात कर रहे थे
1: जी,
0: मासिक धर्म की बात कर रहे थे। तो आप कुछ कह रही थी इसके बारे में।
1: जी राजुल जी, ऐसा है ना कि इसके पीछे भी, जैसे पुराने जमाने में आपने जैसे कहा कि महिलाओं को दूर बिठाया जाता था या फिर घर में छूना नहीं है, तो उस जमाने में काम भी महिलाएं बहुत भारी भरकम किया करती थी। जैसे कुएं से पानी निकाल कर लाना है, फिर चक्की से आटा पीसना है, फिर खेतों में काम करना है, तो उस वक्त महिलाओं को थोड़ा आराम की जरूरत होती थी, इसलिए उस जमाने में इस तरह से उन्हें अलग बिठाया जाता था। पर अब हम हल्का फुल्का काम करने लग गए, फिर भी हम उन्हीं बातों को, उन्हीं रूढ़ी वादी बातों को लेकर चले। और तो और स्वच्छता के प्रति भी हम जागरूक नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन दिनों में नहाना नहीं है, पर कितनी गलत बात है। उस वक्त स्वच्छता का, हाइजीन का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो हमें रोज नहाना चाहिए, नहाना चाहिए, स्वच्छता का कपड़े बदलना चाहिए और जो पैड्स वगैरह उसे भी समय समय पर बदलना।
0: और अब तो इसके विषय में सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बहुत पहल हो रही है, मुफ्त में पैड्स गांव में दिए जाते हैं। और एक बात और है, ये भी कहा जाता है, जब कई बार कोसते भी देखा है, पढ़े लिखे बच्चियों को भी इस बात को कोसते हुए देखा है कि अरे ये क्या है, तो ये वो समय होता है जब कहा जाता है कि स्त्री सबसे ज्यादा, उसके अंदर जो शक्ति, शक्ति कहा जाता है ना, तो शक्ति उसके अंदर सबसे ज्यादा इस समय होती है। और इस बारे में कई, अगर हम गौर से देखें तो बहुत सारे हमें उदाहरण और कई सारी ऐसी रीतियां भी मिल जाएंगी जो इस बात को बिल्कुल
1: प्रूव करती है,
0: प्रूव करती है, प्रमाणित करती है कि भाई ये बहुत खास समय होता है। तो इस खास समय को खास तरीके से बिताने के लिए अलग बिठाया जाता था, ना कि इसलिए क्योंकि गंदे हो जाते हैं। तो गंदगी की यहाँ पर सिर्फ तभी तक रहती है जब तक हम नहाते नहीं है या कुछ भी दूसरी तरह की गंदगी से अपने आप को साफ करने की कोशिश करते हैं, तब गंदगी नहीं रहती। जब हमें कहीं पर आराम करने के लिए छोड़ा जाता है या अच्छे से खाने के लिए कहा जाता है, बहुत जगह ये भी होता है,
1: उस वक्त हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बहुत आराम करना चाहिए। इस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं अपने घर वाली, जो घर की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन्हें इस तरह से आराम दिया जा सकता है, ना कि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाए और उन्हें इस तरह से व्यवहार किया जाए कि अरे दूर रहो, छुओ ना, बल्कि उन्हें बहुत आराम और बहुत प्यार से उस वक्त अगर संभाले तो ये दिन भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं।
0: और साथ ही साथ अगर हम गीत सुनते हुए ऐसी गंभीर विषयों पर बातचीत करते हैं
1: तो कार्यक्रम में मजा आ जाएगा।

0: चांद कहाँ खोया है ये ढूंढने भी कुछ बच्चे बहुत जिद करते हैं जब अमावस्या होती है या जिन रातों में चांद नहीं निकलता। तो कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे मेरे घर के पड़ोस में एक छोटा बच्चा था, तो वो ये बात कहता था कि आप तो कहते हो कि रोज चांद निकलता है, रोज सूरज और चांद तो रोज आते हैं, देखो तुम्हें भी जैसे हम लोग बच्चों को बताने के लिए कहते थे ना कि देखो भाई सूरज चांद रोज समय पे आ जाते हैं, तुम्हें
1: तुम
0: भी सब
1: समय से
0: काम।
1: जाया करो ट्यूशन
0: हाँ,
1: स्कूल।
0: तो उसने कहा कहाँ आते, देखिए चांद तो आ जाया ही नहीं है। तो भाई हमने कहा ये हाजिर जवाबी बच्चों की तो बिल्कुल पानी पानी ही कर देती है।
1: ये जो बच्चे होते हैं हमें बहुत बार शर्मसार कर जाते हैं। ये आज बच्चों की शरारतों के बारे में हम बातें कर रहे हैं, बातें हल्की फुल्की में। तो इसमें एक सखी ने हमारे लिखा है कि मेरे बेटे ने 4 साल का था, तब एक कप में मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, केरोसिन तेल रखा था, वहां पहुंच गया उसके पास और उसने केरोसिन तेल पी लिया पानी
0: अरे
1: समझ
0: बाप
1: के।
0: रे,
1: फिर उसको हम लोग को अस्पताल लेकर भागना पड़ा, 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, फिर ठीक हो गया। यानी देखिए कितने परेशान हो जाते हैं ना माता पिता दादा दादी जब इस तरह से बच्चे ये कर देते हैं। और एक लिखते हैं कि छोटे बच्चों की शरारतें, छोटे बच्चों की शरण हमारे जीवन में खुशियां भर देती है, उनकी शरारती जब याद आती है तो आप ही चेहरा खिल उठता है। मेरा नाती 2 साल का है, वो सारी छोटी छोटी चीजें छोटी जगह पर छिपा देता है, उसे याद भी रहता है कि कौन सी चीज उसने कहाँ रखी है। पूछो तो बताता है कि जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मुझसे कहता है कि नानी मैं पुलिस बोल रहा हूँ, प्रिंस नाम है, और मुझे डांट लगाओगे तो आपको जेल में बंद कर दूंगा।
0: अरे
1: मैं कहती हूँ तुम नानी कहकर किसे बुलाओगे, तो कहता मैं पहले दरवाजा खोलूंगा फिर आपको नानी कहकर बुलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा। बहुत ही लटके झटके से बोलता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर भरारा भरा रहता है। हमें सुन के ही इतनी हंसी आ रही है
0: हाँ, तो
1: तो
0: इनके
1: और
0: मतलब
1: जो
0: इन्हें तो डांटना भी मुश्किल हो जाता होगा। एक संदेश में बताया है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले दंपति का बेटा अंशु भी बहुत शरारती है। अभी वो 3 वर्ष का है, उसने अभी साइकिल चलाना सीखा है और उसके दादाजी ने छोटी सी सुंदर साइकिल खरीद कर दी है। कुछ दिन पूर्व वो अपने मम्मी पापा के साथ नाना नानी के घर गया था, तो अपनी साइकिल की चाबी अपनी दादी के तकिए के नीचे छुपा कर गया था और दादी को बोल कर गया था कि दादी ध्यान रखिएगा कहीं दादाजी उसकी साइकिल लेकर ऑफिस ना चले जाए।
1: कितनी मासूमियत है कि उन्हें ऐसा लगा कि इतने लंबे चौड़े इतने ऊंचे दादाजी इतनी छोटी सी ट्राइसिकल कैसे चलाएंगे।
0: हाँ, और कितना ये भाव भी होता है ना बच्चों में कि ये मेरी चीज है, ये पता नहीं अभी ये ले लेंगे।
1: नहीं, और उन्हें ऐसा लगा ना कि पापा के पास में बाइक है या कार है या फिर मम्मी के पास तो पूरा किचन है, उनकी सारी चीजें मम्मी की, तो ये मेरी साइकिल है या मेरे खिलौने ये मेरे
0: बिल्कुल।
1: हैं। एक साथी ने लिखा है कि मेरा बेटा जब छोटा था तो पूरा दिन उधम मचा कर रखता था, छोटे बच्चों की शरारतें

0: आंगन में हंसी खुशियां बिखेर देती है और उनकी मासूम हरकतें, नटखट बातें और भोली मुस्कान सभी का मन मोह लेती है। कभी वो खिलौने बिखेर देते हैं तो कभी नई नई बातें सीखकर सबको चौंका देते हैं। उनकी शरारतों में मासूमियत छिपी होती है, इसलिए उन्हें प्यार और सही मार्गदर्शन के साथ समझना चाहिए।
1: और एक हमारे साथी ने एक बड़ी खतरनाक समस्या की तरफ इशारा किया है कि भाई आजकल तो छोटे बच्चों में भी इंटरनेट ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और इसके चलते अपनों के आज्ञाओं का उल्लंघन सार्वजनिक रूप से ही देखा जा रहा है और उनके शैतानी भरी शरारत से ना ही उनकी आंखों पर ही चश्मे चढ़े हुए हैं और हम लोग अपने अपने आंखों पर चश्मे चढ़ाए हुए हैं। जाने कैसा यह आश्चर्य है जो उनके द्वारा किए जाने वाली शरारतें ही अब स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है। मतलब वो वही शरारतें कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं।
0: देख रहे हैं। वही एक साथी लिखते हैं कि बच्चों की शरारत बेहद पसंद आती है, तो कभी हंसी भी आ जाती है, तो कभी कभी नाक में दम भी हो जाता है, तो कभी माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। हमारे घर में कई छोटे बच्चे थे, एक बार वीसीआर के अंदर उन लोगों ने न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दिए।
1: ओ
0: अब वीसीआर चलना बंद हो गया। जब
1: हाँ
0: मैकेनिक को बुलाया तो उसने इतने सारे कागज निकाले, पूछने पर किसी ने भी नहीं बताया कि किसने काम किया था।
1: सच में ये शरारतें तो खत्म होने का मतलब
0: नाम ही नहीं
1: नाम
0: लेती।
1: नहीं लेती और लगता है कि चलती भी रहे, बाद में याद करके कितनी हंसी आती है।
0: हाँ,
1: अच्छा, अब एक मुस्कुराहट और सज जाएगी अगर हम एक गीत सुन लें।
0: सुनते हैं गीत।
2: ओ मेरी

0: सोना ली, ब्रेक पूरा हुआ और हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद।
1: कार्यक्रम है सखी सहेली।
0: सहेली
1: और एक साथी ने लिखा है कि बचपन में मैंने भी एक शरारत की थी। 1960 के आसपास हमारे घर बिजली का कनेक्शन आया था और उन दिनों कुतूहल वश वायर से जुड़े होल्डर में लैंप लगाकर वायर को सीधा प्लग में डालकर स्विच ऑन करके जो स्पार्क हुआ उससे मेरी उंगली को झटका लगा। पर चीखने के बाद मेरे बड़े भैया ने स्विच ऑफ कर मुझे छुड़ा तो लिया, लेकिन उंगली पर स्पार्क के निशान के साथ काली पड़ गई थी उंगली, और ऊपर से डांट के साथ मार भी पड़ी थी वो भी झटका अलग से लगा था। साथ ही एक साथी ने लिखा है कि खुद को ट्रंक के अंदर, वुलन कपड़े का जो ट्रंक होता है उसमें सारे कपड़े निकाले और खुद को ट्रंक के अंदर बंद कर
0: ये
1: दिया।
0: ये बहुत खतरनाक शरारत होती है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि कई बार इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, चोट भी बहुत गहरी लग सकती है। एक बड़ी मासूम सी शरारत हमारे एक और साथी ने साझा की है कि सर्दियों के दिन में हमारे घर में परिवार और बच्चे आए थे। वो देख रही थी कि सभी बॉडी लोशन और क्रीम का प्रयोग अपने शरीर पे करते हैं। उसने अपने टेडी बियर को पूरा कोल्ड क्रीम निकाल कर टेडी लगा दिया, और बहुत बहुत ज्यादा लगा देने पर उसे संभाला नहीं तो उसने उसे बेड के नीचे छुपा दिया। घर में महक आ रही थी और जहां फर्श पर भी गिरा तो पैर में चिपक रहा था। तो बच्ची की बड़ी बहन ने बताया कि इसने कुछ किया है, तो पूरे बेड पर उसने फैला दिया था। जब उसकी माँ ने डांटा तो बोली कि टेडी को ठंड लग रही थी तो इसलिए उसे मालिश कर रही थी, जैसे नानी मुझे करती है तो मैं टेडी को कर रही थी। तो फिर उसे समझाया गया कि भाई तुम टैडी को मत करो, तुम बच्ची हो, तुम्हारी मालिश होगी, तुम नाना नानी की कर दिया।
1: कितना कितना मासूमियत भरा सवाल था और जवाब भी बड़ा ही मासूमियत भरा था। एक ने लिखा है कि एक बच्चा बहुत देर से एक घर की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा कि उसकी मदद कर दे, हमने बेल बजा दिया। फिर बच्चों को वॉशरूम जाना था तो बोला अंकल अब भागो, वो घर का मालिक आ जाएगा तो हमें बहुत डांट देगा। यानी उन्हें ऐसा लगा कि किसी उसे जाना है अंदर, तो बच्चा तो शरारत कर रहा था। उसके बाद में एक ने लिखा है कि मेरे बहन के छोटे बेटे ने उनके घर के बोरिंग यानी बोरवेल में पाना पंचिश और ना जाने सारे औजार उसमें डाल दिए थे और सारे नए खरीदने पड़े।
0: क्या क्या तो गजब गजब शरारतें हैं। और बच्चों की ये जो मासूम शरारतें होती हैं इन पर बिगड़ते भी हैं हम कई बार, लेकिन अगर इन्हें अगर इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उन्हें ये शरारत करने देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं शरारतों से उनके दिमाग का भी विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है, और वो मिलजुल कर या किसी कठिन समय में अपने आप को कैसे निकालना है ये भी सीखते हैं। तो बस नजर रखनी पड़ती है बच्चों पे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि एक बच्चा था, नया खिलौना जैसे ही उसको मिला तो वो तुरंत उसका सब ऊर्जा बराबर कर देता था। उसको बहुत शौक था मोटर कार का, हेलीकॉप्टर का, तो बस वो देखते ही तुरंत उसको उसको चाहिए पेचकस, पेचकस से उसने तुरंत खोला वोला और सब अलग। तो भाई लोग कहते थे कि क्या करना है तुम्हें, तो कहता था मैं कोशिश कर रहा हूँ मैकेनिक बनने की, और बाद में आगे चल के वो वास्तव में
1: बहुत बड़ा इंजीनियर
0: बना
1: जी।
0: तो भाई ये कुछ
1: यानी उन्हें रोके टोके मत कि आपको लगता है

0: इतना महंगा खिलौना खरीदा और इसने तो दूसरे दिन तोड़ दिया, पर क्या पता उसकी जो क्रिएटिविटी है उससे वो उसे एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना दे। साथ ही जो बच्चे ना क्रेयॉन होते हैं ना उससे दीवारें गंदी करते हैं, तो बहुत सारे लोग डांटते हैं, पर उन्हें डांटे ना एक छोटा सा कोना उन्हें दे दे, क्योंकि क्या होता है ना जो क्रेयॉन उंगलियों में पकड़ते तो उनकी उंगलियों के मसल मजबूत होते हैं, तो उन्हें गोदने दीजिए, ऐसा नहीं है कि पूरा ही घर गंदा मत करने दीजिए, पर उन्हें कह दीजिए कि ये जो है ना ये कोना तुम्हारा है, जहाँ जो या फिर व्हाइट बोर्ड आते हैं ब्लैक बोर्ड आते हैं
1: वो लगा सकते हैं,
0: वो लगा सकते हैं, या फिर ऐसे
1: कागज लगा दे, एक जो बड़े बड़े चार्ट पेपर्स आते हैं वो लगा दे और कहें कभी कभी कोई कोई आए तो दिखाए भी कि देखिए भाई ये इसने बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनाया। बच्चों की अगर इस तरह से तारीफ भी करते रहें कि गोदने वाले बच्चे, ये गोदने वाली शरारतें बहुत होती हैं,
0: बहुत होती
1: तो
0: है।
1: बस ये कह दिया जाए कि भाई देखो तो कितने सुंदर सुंदर इसने कलर्स देखा आपने कैसा इस्तेमाल किया, तो बच्चे को लगता है कि हाँ कुछ बड़ा काम किया, और अगली बार जब वो गोदना शुरू करता है तो उसका ध्यान उन रंगों पर भी जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर की वो रचनात्मकता विकसित हो रही है।
0: पर एक बात और है कि अगर उसने कुछ गलत शरारत की है, जैसे कि कैंची से काट दिया है, खुद के बाल ही काट देते हैं, कभी कभी कभी तो पलकों के बाल भी काटने से नहीं चूकते हैं बच्चे,
1: या छोटे भाई बहनों के काट देते हैं,
0: तो उसकी ना बहुत बार बार लोगों को बता बता के तारीफ ना करे, तो उन्हें लगता है मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। तब उन्हें समझाए कि भाई अगर ये आंख में लग जाती तो आंख हमेशा के लिए चली जाती। तो ये इन बातों का हमें बस ध्यान रखना है,
1: मतलब ऐसे चुभने वाली चीजें बच्चों की पहुंच से दूर ही रहे तो अच्छा है, नरम नरम से खेल, अच्छे अच्छे खिलौने, ये सब देकर बच्चों का बचपन ऐसा ही बना रहे जैसे कि
0: गाने में है।
1: हाँ।

0: सोनाली, देखिए शरारतों की बात चल रही है तो कैसे कैसे कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। हमारी एक सखी बता रही है कि मेरा बेटा जब 6 साल का था तो एक दिन अकेले खेलते हुए किचन के स्लैब के नीचे छुप गया और सो गया। कुछ देर बाद जब उसके दादा दादी उसको ढूंढने लगे तो वो सोने के कारण रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो घबरा गए। मैं दूसरे शहर में थी, मुझे पता चला तो मैंने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में चेक किया तो पता लगा जनाब कहाँ छुपे थे। मैंने तुरंत उसके दादाजी को कॉल किया, जब वो वहां गए तो पता चला कि सो रहा है आराम से। खैर, जान में जान आई।
1: यानी दादाजी नाना जी रहे
0: ना।
1: तो उसका भी कितना फायदा है ना।
0: बिल्कुल, मतलब बच्चों की शरारतों के बीच में एक अंकुश भी रहता है, वैसे दादा दादी को भी अच्छा लगता है, अकेलापन नहीं लगता।
1: यानी परिवार में पुल का काम करते हैं ना, ब्रिज का काम करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दादा दादी ब्रिज का काम करते कि उनकी बदौलत पूरा परिवार जुड़ा रहता है।
0: मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है कहा भी जाता है, तो भाई वो अपने बच्चों को प्यार भी देते हैं, भरपूर प्यार भी देते हैं, और जो अनुभव होता है ना उनका अपने बच्चों को पालकर वो भी काम आता है,
1: बहुत काम आता है। पर अभी परिस्थितियां थोड़ी
0: अलग
1: होने
0: हो
1: लगती है। एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी के साथ हम बहुत समय बिताते थे, अभी बच्चों में शायद वैसा समय नहीं है और न ही उतने शौक है उनसे कहानी सुनने के, किस्से सुनने के। सब कुछ तो उनको फोन में और टीवी में मिल जाता है, दादा दादी के साथ समय बिताना पसंद भी नहीं आता उन्हें। इसका नतीजा ये होता है कि अधिकतर बुजुर्ग अकेलेपन में ही समय बिताते हैं, जबकि बुजुर्ग के पास तो सजीव अनुभव और ज्ञान होता है, संस्कार देने की काबिलियत होती है और सोशल मीडिया अब टीवी से जुड़ गए हैं। उस जमाने में कहां था सोशल मीडिया और टीवी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये एक थोड़ी सी समस्या है, परेशानी है, ये
0: परेशानी है। और इस बारे में हमारी एक सखी लिख रही है कि आजकल के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि परिवार बहुत छोटे हो गए हैं। हमारे घर में ये समस्या नहीं है, हमारा संयुक्त परिवार है, 13-14 लोग अभी साथ में हैं, तो बड़े बुजुर्गों को अकेलेपन की भावना नहीं आती है, चहल पहल हमेशा रहती है। मुझे लगता है कि एकल परिवार भी एक कारण है अकेलेपन का,
1: बहुत ही बड़ा कारण है अकेलेपन का एकल परिवार। और सचमुच ना, पुराने जमाने की बात की जाए ना राजुल जी, तो उस वक्त प्राइवेसी नाम की ऐसी चीज ही नहीं हुआ करती थी जो आजकल लोगों को चाहिए। लोगों को बस लगता है कि हमें बस हमारा स्पेशल यानी बेडरूम, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम उनका हो, उसमें किसी को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बच्चों को भी सब प्राइवेसी की जरूरत है। पर पुराने जमाने में सब एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते थे, एक घर में रहते थे, लड़ते झगड़ते भी थे पर फिर एक हो जाते थे, तो एक बहुत सुंदर दिखता था ऐसा घर। पर अभी ये थोड़ा सा इसकी कमी नजर आ रही है। एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्ग अगर घर में है तो ये बात का सबसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास थोड़ी थोड़ी देर जाकर समय देना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ हमारी सेवा और समय ही नहीं, उन्हें हमारा थोड़ा सा प्यार भी दे देना चाहिए तो वे बड़े खुश हो जाते हैं।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब रेडियो पर आपके कार्यक्रम सुनते हैं तो अकेलापन नहीं लगता, हार्ड कॉपी में किताब पढ़ते हैं जिससे मन के तूफान शांत होते हैं, सोशल मीडिया कम वापरता हूँ, कसरत करके तंदुरुस्त जीवन जीने का प्रयास है, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा खाओ पियो और मौज करो, सादा जीवन, किसी को मदद करने से भी अकेलापन महसूस नहीं होता।
1: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं एकल परिवारों में बुजुर्गों का अकेलेपन की समस्या बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों का अकेलापन केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण उनमें डिप्रेशन और याददाश्त कमजोर होने की जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। इसके उनके इस खालीपन को दूर करने के लिए बातचीत, जुड़ाव और नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी है। दो प्यार के बोल, सुविधापूर्ण उनकी दिनचर्या, इस उम्र में उनके अकेलापन दूर करने के लिए मेल मिलाप बहुत जरूरी है जो आजकल बेहद कम हो गया है।
0: और ये एक हमारे श्रोता ने अंग्रेजी में संदेश भेजा है, आई एम अ सीनियर सिटीजन रिटायर्ड फ्रॉम बैंक एंड स्टार्टेड अ न्यू जर्नी इन रेडियो एज आरजे ऑन कम्युनिटी रेडियो, इंजॉइंग अ लॉट, आई लव रेडियो सिंस माई चाइल्ड हुड, विविध भारती साथ हो तो बोर होने का सवाल ही नहीं है।
1: क्या बात है
0: भाई, इस तारीफ के लिए शुक्रिया, विविध भारती के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और एक बात और इनके संदेश से पता लगती है।

0: अगर बुजुर्ग कोई अपना शौक डेवलप कर लेते हैं, हाँ डेवलप कर लेते हैं उस समय भी, ये सोचकर नहीं कि ये जिंदगी का अवसान है, बल्कि ये एक नया पड़ाव है, एक नई यात्रा है, और अगर वो एक कोई शौक अपना शुरू कर लेते हैं तो उससे निश्चित रूप से उन्हें अकेलापन कम महसूस होगा। ये तो सही बात है। एक हमारे पढ़ रही थी तो भी एक संदेश में शायद ये भी कहा गया है कि आजकल बच्चों के पास समय नहीं होता। सही बात है, समय नहीं होता, बड़े जब होने लगते हैं तो कम समय रहता
1: है। पर अगर ऐसा है ना कि बच्चे नहीं बात कर रहे हैं तो बुजुर्ग खुद भी जाके बोल सकते हैं कि कैसे हो बेटा, क्या हाल चाल है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। नहीं तो ऐसा लगता ना कि अरे वो बात नहीं कर रहे, वो नहीं जा रहे, तो पहल दोनों तरफ से होनी
0: दोनों
1: चाहिए,
0: दोनों तरफ से होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि बच्चे बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, तो अगर बच्चे को उस समय उसको जो चाहिए, मान लीजिए कि बहुत व्यस्त है, पढ़ाई कर रहा है या किसी प्रोजेक्ट में अपने बिजी है, और आप सिर्फ इतनी सहायता कर रहे हैं कि मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाने में उसको कुछ काटने की जरूरत है, आप काट कर उसे वो पकड़ा देते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है।
1: उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगता है,
0: और हमें गीत सुनना भी बहुत अच्छा लगता है।
1: सुनते हैं गीत।
2: ओ सजना

0: भाई देखो, हमारे एक श्रोता ने अपनी दिनचर्या साझा करके बताया है कि सुबह पूजा पाठ, फिर शिवालय, फिर भोजन, फिर 1 बजे सुरीला सफर सफर, फिर सखी सहेली, फिर 5 बजे फिर आराम, और फिर 5 बजे 5 किलोमीटर वॉकिंग, फिर भोजन, फिर टीवी प्रोग्राम, फिर 5 या 6 घंटे नींद। यही है 70 साल के बुजुर्ग की दिनचर्या।
1: क्या बात है, ये तो किसी 17 साल के जो है ना युवा को भी शर्म आएगी, इतनी परफेक्ट दिनचर्या है
0: हाँ सही बात है।
1: आपकी। वैसे पानी पानी मुहावरे का मतलब है शर्म से पानी पानी होना। तो हमारे

0: साथी ने लिखा है कि पानी पानी होना, इस मुहावरे से एक बात याद आ गई। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और उसे लेकर मैं एक परिचित के घर गई। बातचीत के बाद मेरी परिचित चाय बनाने के लिए उठी तो मैंने बोल दिया मैं चाय नहीं पीती, और मेरे बेटे से पूछा दूध पियोगे, तब भी मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा बेटा भी दूध नहीं पीता था। लेकिन जैसे ही मैंने मना किया, मेरा बेटा तुरंत बोल पड़ा कि मुझे खूब गर्म दूध दीजिएगा। और आंटी सुनिए ना, मेरी मम्मा चाय नहीं कॉफी पीती है। इसलिए मम्मा के लिए कॉफी बना दीजिए। मुझे उस समय बहुत शर्माई और शर्म से पानी पानी हो गई। ये सच
1: सही बात है, बच्चे पोल खोल देते हैं,
0: पोल खोल।
1: एक बच्चे ने कहा कि जब उसके पिताजी ने कहा कि भाई हम घर पर नहीं है, जाओ कह दो अंकल आए, कह दो घर पे नहीं है, तो उसने जाके कहा पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अब मतलब पिताजी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पानी पानी, वो झक मार के फिर बाहर निकले और मिले अपने मित्र से, क्योंकि बच्चे ने बता दिया था कि पिताजी ने कहा है कि हम घर पे नहीं है।
0: एक बार एक व्यक्ति थे, उनके मित्र आए थे, तो उन्हें अंदर से आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, उनकी छोटी सी बेटी थी। तो अब क्या बात करें बच्चे से, तो उन्हें पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, पहले नाम पूछा क्या नाम है आपका, फिर आपके पापा क्या काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा तो घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते हैं। सब पोल खोल दी अंदर से, पापा ने सुना, अरे ये मैं तो वो पानी पानी हो गए।
1: अच्छा वो बच्चा भी बेचारा क्या करे, उसने काम का मतलब यही समझा कि हम, माँ कहती होगी कि हम काम कर रहे हैं, तो काम का मतलब झाड़ू लगाना। तो कभी कभी अगर पिताजी ने झाड़ू लगा भी दी तो उसने कह दिया कि ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, मतलब वो तो बड़ा ही कर रहा था।
0: और एक बार ऐसे हुआ कि बैठे हुए थे लोग, तो छोटी बच्ची भी थी साथ में, तो उसकी मम्मी बोले कि चलो टाइम हो रहा है हम घर जा रहे हैं, तो बोले नहीं नहीं मम्मी रुको रुको, अंदर से कप प्लेट की आवाजें आ रही है, शायद चाय बनने वाली।
1: सच में ये स्थिति जो है बड़ी खतरनाक होती है, उस समय माँ बाप को समझ में नहीं आता कि देखें रुकें क्या करें। और कभी कभी ये भी कहना पड़ता है भाई बड़ा शरारती है, जैसे कह दे कि कई बार ऐसा होता है कि माएं कहती हैं बच्चा खाता ही नहीं, कुछ नहीं खाता, और इधर बच्चे ने जैसे ही नाश्ते की प्लेट आई और उसने खाना शुरू किया,
0: सब खा लिया।
1: तो ऐसे में एक बात बस यही कहेंगे कि अगर बच्चे हैं तो बच्चे हैं, और हो सकता है कि सामने प्लेट में जो हो वो उन्हें पसंद आ रहा हो इसलिए वो खा रहे हो, तो घर में ऐसा रूल बनाए ना कि बहुत सी बार ऐसा होता ना कि बच्चे, हम बाहर जाके नहीं खाने देते बच्चों को, तो ऐसा रूल अगर आपने बनाया है कि बाहर जाके किसी के यहाँ खाना मत, तो बच्चे का मन फिर मचलेगा,
0: जिसके लिए हम खूब मना करते हैं।
1: हाँ खूब मना करते हैं, बल्कि इसके बजाय ये कर दें कि भाई अगर बच्चे को कोई चीज पसंद आ रही है, जैसे अगर बच्चे ने, छोटे बच्चे ने मान लीजिए, एक मैंने देखा था कि एक बच्चे घर गया, बच्चे छोटी बच्ची थी उनके साथ, और उन्होंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लाकर उसमें रखे और उन्होंने कहा कि खाओ। अब जगह ऐसी थी कि जो माँ गई थी तो उसको लगा कि नहीं खाना चाहिए, तो वो उसने एक ले लिया और कुतरना शुरू कर दिया। बच्चे ने एक किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर दूसरी किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर तीसरी किशमिश उठाने वाली थी तो उसे लगा कि टोकना चाहिए, फिर उसे लगा कि अगर हम टोकेंगे तो बच्चे को गलत मैसेज जाएगा, तो उसने क्या किया कि कहा कि अच्छा तुम्हें किशमिश अच्छी लग रही है, और दो चार किशमिश बीन कर उसको अलग से दे दी, बच्ची अपना वो खाती रही, और इस तरह से उसको भी पानी पानी नहीं होना पड़ा और बच्ची की भी शरारत या जो बाल स्वभाव है वो पूरा हो गया।
0: और जैसे पानी पानी होने की बात है, इसके तो कई उदाहरण हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ चीज खाने की मनाही होती है, और भाई इच्छा तो होती है, अब मिठाई खाने की मनाही है, घर वाले कहने की भाई डायबिटीज है खाओ मत मीठा खाओ, अब बहुत ललचाया हलवाई के यहाँ जाके खा लिया, और घर वालों ने किसी ने देख लिया
1: तो पानी पानी हो गए।
0: ऐसे लज्जित होना स्वाभाविक सी बात है, पर लज्जित हो गए हैं ना तो उसके बाद में अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना है, उसे वही छोड़ देना है कि वो ठीक है ना, गलती हो जाती है, बड़े हैं बूढ़े हैं कोई भी उम्र के लोग हैं, अगर गलती हो गई है तो उसको हंस के स्वीकार कर ले, उसका दिल पर बोझ ना रखे, जिंदगी को हल्के में लेना चाहिए।
1: और देखो हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा संदेश हमारे साथ साझा किया है कि वो जो विविध भारती के कार्यक्रम होते हैं जिनमें वो अपने संदेश साझा करते हैं, जैसे सखी सहेली या सुरीला सफर, तो उसमें वो अपनी और अपनी धर्म पत्नी के प्रेम के बारे में अगर कभी कुछ संदेश देते हैं तो वो पढ़कर पत्नी पानी पानी हो जाती है शर्म से, वो तो ऑफिस में देते हैं, पत्नी वहां घर में पानी पानी हो जाती है। तो भाई लेकिन ये कितनी सुंदर यादें स्मृतियां आप लोग साथ साथ संजो रहे हैं।
0: सचमुच और

0: ये यादें हैं ना, ये बहुत सुंदर यादों को हमें संजो कर भी रखना चाहिए कि ये पल, ये क्षण जो है फिर से नहीं
1: फिर
0: आते।
1: से नहीं आएंगे, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन हम ये समय नहीं बीतने देंगे, हम गाना सुनेंगे।
0: बिल्कुल सुनते हैं गीत।

0: भाई बड़ी रोचक रोचक बातें हो गई। हम लोगों ने काफी किस्से सुन लिए और उन पानी पानी होने वाली स्थितियों के बारे में भी जान लिया जो कई बार एकदम ऐसा कर देती हैं कि समझ में नहीं आता इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या करें कैसे करें।
1: तो बहुत मजा आया, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखकर भेजे। तो विविध भारती से जुड़े रहिए और हमें दीजिए इजाजत। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और राजुल का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15
1: इंतजारी है तेरी।
0: फिल्म मुल्क
2: सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़
1: एक टुकड़ा अंदर अंदर
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
1: बेखबर
3: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है, उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
4: हाँ,
3: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्में दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़ और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
4: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
3: तो मुल्क के हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का, क्रमवार आप बताएं और रचना प्रक्रिया बताएं।
4: मुल्क का गाना आप वो सुनाएं, पिया समाए।
3: जी,
4: बहुत अच्छा गाना है,
3: बहुत पसंदीदा कव्वाली।
4: हाँ,
3: कव्वाली है।
4: यस यस,
3: कव्वाली की शक्ल में है ये गाना। और हम आपको बताएं कि विविध भारती
4: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने।
3: जी बिल्कुल। हाँ। पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। हाँ। इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
4: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
3: जी,
4: या आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी हैं जो याद की जाएंगी।
3: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
4: जिक्र किया जाए,
3: दर्ज होती हैं आज के समय में।
4: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है।
3: बिल्कुल।
4: और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
3: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली, और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे, और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि शकील आजमी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते

0: हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चली है, तो आर्टिकल 15 भीड़ कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15, इंतजारी, जिसे
1: हाँ
0: आयुष्मान
1: हाँ
0: खुराना
1: हाँ
0: ने गाया भी
1: जी
0: है
1: हाँ जी हाँ
0: और वो
1: हाँ इंतजारी
0: एक्टिंग
1: सुनवा
0: भी
1: सकते
0: की।
1: हैं आप
0: जी
1: बिल्कुल
0: तो
1: आर्टिकल 15
0: हाँ,
1: से।
0: तो कैसे वो गाना बना, वो बनने की क्या कहानी,
1: उस गाने की कहानी ये है कि
0: कोई दिलचस्प बात हो तो
1: हाँ
0: जरूर
1: दिलचस्प जी हाँ दिलचस्प बात है।
0: बताइएगा।
1: अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं वो नहीं बता रहा हूँ, आप यूँ समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
0: पड़ा है,
1: पड़ा है
0: इजाजत फिल्म का
1: लौटा
0: गाना
1: दो।
0: है।
1: हाँ तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे। हाँ उल्टा
0: अरे क्या
1: मतलब कि तो
0: बात है, सामान देना है,
1: हाँ
0: मेरा
1: वो
0: सामान।
1: कह रहे लौटा दो
0: हाँ
1: और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जाओ।
0: हाँ
1: ठीक है
0: संचय करना है यहाँ
1: हाँ हाँ
0: पर।
1: तो उसमें जो गाना है
0: हाँ
1: वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपसी जो मोमेंट्स होते हैं, है ना, हंसी है गम है रोना है
0: जी।
1: मुस्कुराना है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं और कहीं किचन में थोड़ा झगड़ लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मोमेंट्स हो सकते हैं, तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा
0: अच्छा,
1: हूं।
0: क्या बात है, ये
1: ठीक
0: सारा कुछ एक
1: है
0: गाने में
1: हाँ तो तुम
0: आना।
1: तो बिछड़ गए हो और खुश हो
0: हाँ
1: लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूं, वो साझा जो चीजें हैं हमारी मैं उसको अकेला जी रहा हूं और मैं दुखी हो रहा हूं, तो तुम एक काम करो ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना इंतजारी।
0: जी,
1: हाँ
0: तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है
1: हाँ
0: तो।
1: इसी इसी तरह से बनी वो कि आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी,
0: क्या बात है, वाह
1: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी,
0: वाह
1: है
0: वाह, बहुत सुंदर।
1: ना है ना।
0: तो
1: अच्छा पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी ये लाइन पहले नहीं थी, उसमें
0: हाँ
1: कुछ खुमारी
0: हाँ
1: राइमिंग की
0: जी
1: लाइन थी, तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं, तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे अरे हम तुम्हारी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे इंतजारी देखत रहे हैं पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना वो बहुत विशाल बहुत
0: विविध
1: बड़ा मुल्क है
0: विविधरंगी है।
1: और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं, तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है ना,
0: बिल्कुल।
1: कुछ नया लगता है जब। तो मैंने इंतजारी जानबूझ के और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार कुछ नया लफ्ज ले आओ, तब उसकी जगह पे ये आया आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना है
0: जी।
1: और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की
0: रेजगारी है।
1: रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा, तो वो उसका उल्टा गाना था जो गुलजार साहब का था ये उसके बरक्स था। तो
0: क्या बात
1: ये
0: है।
1: सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना वो।

0: जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफर। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट, पिया समय हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने के बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही, उनकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे, और ऐसा फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब जरूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए। तो अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलिहाबाद वगैरह में, और
0: अभी गाना लिख दो जल्दी।
1: और हम जो हैं मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक वो, और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था। हाँ, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था
0: और मुल्क में,
1: और मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे।
0: जी जी। हाँ,
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है।
1: हाँ,
0: कि वो गाना देकर चले गए हैं।
1: हाँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी है शूटिंग में, ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे मैं बताता हूँ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका फोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफेद रंग बनता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर?
0: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद रंग है, उसमें कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो तो दूसरा हो जाएगा।
1: तो हाँ, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है। और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी एकजहती होनी चाहिए।
0: जी, जी, जी।
1: ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको लिखा। मुश्किल गाना था बहुत
0: जी।
1: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।

0: बेहतरीन फिल्म
1: हाँ,
0: थी
1: डिफिकल्ट सिचुएशन थी।
0: जी
1: तो मैंने लिखा उसमें कि पिया समाए पिया समाए, जिया में मोरे पिया समाए, ये हुक है। उससे पहले लाइन आती है, सात रंग हैं सातों पिया के। हाँ,
0: सात रंग है सातों पिया के, क्या
1: सात
0: बात
1: रंग
0: है
1: होते हैं।
0: जी।
1: अब मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए,
0: जी जी
1: ठीक है, सारे समुदाय जो हैं वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो हैं एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर
0: ऊपर
1: है, भगवान है,
0: ईश्वर खुदा
1: ठीक
0: है।
1: है, हाँ, और महबूब भी है हमारा, ठीक है, डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लगा चुनरी में दाग और फलाना, वो
0: छुपाऊं
1: है
0: कैसे,
1: ना, घर
0: बिल्कुल
1: जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल, दो
1: तो
0: अर्थी।
1: हाँ, तो ये दो अर्थी, ये भी
0: हाँ
1: मैंने
0: हाँ
1: इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, है
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: ना। तो ये दूसरे वाले को वो कटाक्ष कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगेंगे,
0: रंग दिखाई
1: हाँ,
0: पड़ेंगे
1: अलग
0: आप।
1: अलग मत देख, हम सब एक हैं, सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिलके भई मैं उजली,
0: वाह क्या बात है,
1: सातों से मिलके
0: भई मैं
1: भई मैं
0: उजली,
1: उजली,
0: वाह वाह क्या
1: कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
0: बात
1: पिया
0: है।
1: समाए पिया समाए, जिया में मोरे पिया समाए। अभी देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है, कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूं,
0: जी जी
1: और तू भी लगा के देख कभी। तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था और ऐसा वो सटीक आया है, ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई। बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
0: तो ये जो फिल्म है वो एक संदेश देती है, ये गाना भी
1: हाँ
0: संदेश देता
1: हाँ
0: है, एक
1: बिल्कुल
0: सब एकजुटता का
1: बिल्कुल
0: संदेश है,
1: बिल्कुल
0: और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। अब यहाँ हम आते हैं आपकी फिल्म धोखा में। फिल्म धोखा
1: हाँ
0: MM करीम साहब ने गाया है और
1: जी
0: कंपोज भी किया है गाना,
1: जी
0: इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं, क्योंकि
1: मतलब आप
0: आपके
1: भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंची हैं।
0: पहुंच गए, दस्तक दे रहे हैं। और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है और आपकी फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह ले योगदान भी है, और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ, प्यार रहा बहुत उनका भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा
1: है
0: भट्ट,
1: पूजा भट्ट, उन्होंने डायरेक्ट की थी। और ये गाना जो है MM करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मेरे पसंदीदा कंपोज़र हैं वो, और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना। तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके। मैंने उसको तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे मैंने रिकॉर्ड किया उसमें, और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो। और गाना लिखा जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया, कहीं कहीं अटके लेकिन फिर वो रवां हो गया। जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवां हो गया वो गाना
0: जी।
1: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बढ़ती गई।
0: क्या बात है।
1: हाँ, वो जब वो ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था, बहुत खुश थी उस गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर। हाँ,
0: जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था, फिल्म का गाना, इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था, अगर तुम मिल जाओ, बहुत बहुत मशहूर हुआ था
1: जी। तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था ये।

0: उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था। रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना, कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी, मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
1: जी।
0: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे। और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई, उसका एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी, सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को। तो उसमें गाना था वो के ने गाया था वो ऐ बेखबर
1: जी जी जी,
0: तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था जाने जा तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो। तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ
1: जी। तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को?
0: आई बेखबर
1: सुनते हैं। हाँ। ये गाना

0: रूप कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में।
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: रूप कुमार राठौड़ साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: तो वो गजल सिंगर होते थे
0: जी जी,
1: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
0: नाम शोहरत
1: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों
0: जी, जी, जी।
1: संदेशे आते हैं, या वीर जारा का गाना है, है ना। इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गजलें सुनते थे और उसमें से चूज करते थे और गजलों को कंपोज करते थे। लेकिन वो गजल का टाइम भी जा रहा था। जब मैं आया हूँ उससे पहले गजल का एक बड़ा दौर आया था, जिसमें जगजीत जी की गजलें और पंकज उदास साहब की गजलें, हरिहरन साहब, रूप कुमार राठौड़ साहब, मतलब नए गजल सिंगर भी आते थे, उनके एल्बम भी खूब चल रहे थे
0: जी, जी।
1: लेकिन जब मैं आया हूँ तो ये दौर खत्म हो रहा था
0: जी, जी।
1: गजल का मार्केट डाउन हो रहा था जब मैं आया था। तो मेरे सामने ही वो रूप भाई ने कैफी आजमी साहब का एल्बम किया मेरे सामने, मीर तकी मीर का एल्बम किया मेरे सामने, तो मेरी वो गजलें कंपोज करते थे। अच्छा, मेरे पास कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नामी नहीं था, तो मैंने सोचा कि रूप भाई इतने अच्छे कंपोजर हैं, तो ये अगर फिल्म के गाने कंपोज करें और मैं लिखूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म के गाने क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए नहीं करता कि लोगों को पता चलेगा दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों को, तो जो गाने गवा रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में। तो थोड़े दिन तक तो वो इस बात पर टिके रहे, और मैं उनके अंदर वो म्यूजिक कंपोजर को, जो फिल्म का म्यूजिक कंपोजर होता है, उसको मैं जगा चुका था, मगर
0: जी जी
1: है ना, कहीं ना कहीं उनके भीतर भी था वो, क्योंकि हर म्यूजिशियन का वो सपना होता है
0: जी जी,
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। तो एक दिन उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, लाओ मुखड़े कंपोज करता हूँ। तो मैंने लिखने शुरू किए, उन्होंने कंपोज करने शुरू किए, और हमारा आज भी 500 गानों का बैंक है, जो हमारे गाने रूप कुमार राठौड़ साहब के बैंक में मेरे लिखे हुए
0: दर्ज है।
1: हाँ, और 400-500 गाने होंगे।
0: बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम भी हैं आपके नाम, एक जोगिया हमें याद आ रहा है।
1: हाँ,
0: जोगिया मन, तो वो कैसे बना वो गाना?
1: जोगिया मन तो अभी बात का है, वो एक नया कंपोजर है और बहुत अच्छा सुरीला है, हरीश सगाने
0: जी,
1: उनके साथ किया था मैंने, बहुत अच्छा लड़का है। और हरीश सगने के साथ हमने एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट साहब की एक फिल्म थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि शकील भाई मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप गाने लिखें। तो मैं गया उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे हरीश सगने से मिलवाया
0: जी जी।
1: और उनकी एक फिल्म आई थी 1921 जिसमें जरीन खान थी हीरोइन, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई पिक्चर, और उसके सारे गाने आप सुनेंगे, बहुत अच्छे गाने।
0: थोड़ा सा हम पीछे क्यों चलते हैं, 2004 में जब

0: की पहली फिल्म आई थी, तो वो फिल्म कैसे मिली आपको? पहली फिल्म तक आप कैसे गए? वो तेरा नाम था,
1: वो तेरा नाम था, बिल्कुल।
0: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? हम तो एंटर कर चुके हैं, लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई
1: हाँ,
0: आपकी?
1: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात है।
0: अच्छा
1: तब मैं सूरत में रहता था
0: जी जी
1: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था। पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत चला जाता था, फिर
0: अच्छा
1: पैसे इकट्ठा करता था फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन समीर सेन से
0: से
1: हुई।
0: हुई थी।
1: हाँ, दिलीप सेन से हुई और दिलीप सेन के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो दिलीप सेन एक फिल्म कर रहे थे, उसके गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सहारा स्टूडियो में, जुल्मी, जुल्मी फिल्म थी अक्षय कुमार।
0: जी जी जी
1: तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ सहारा में आ जाओ और अपनी किताब लेके आना।
0: वहां तनवीर खान भी के
1: हाँ
0: राइटर
1: हाँ
0: थे।
1: हाँ हाँ हाँ तो मैं वहीं आ रहा हूँ। तनवीर खान साहब तक आ रहा हूँ मैं। तो मैं सूरत से अपनी एक किताब, मेरी पहली किताब छप चुकी थी धूप दरिया, तो वो 96 में छपी थी वो किताब। तो ये 96 से 2000 के बीच की बात है। तो मैं वो किताब लेके आया और सहारा स्टूडियो में मैं बैठा था मिलने के लिए। तो तनवीर खान साहब की नज़र उस किताब पर पड़ी। उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल देखिए। तो उन्होंने दो चार पेज इधर उधर पलटे और वो किताब जो थी उसका इंतसाब माँ के नाम था।
0: अच्छा
1: हाँ, तो एक शेर जो है वो कैप्शन के तौर पर नीचे था कि अब भी सोते में ऐसा लगता है
0: अब भी सोते में ऐसा लगता है, क्या बात है,
1: सर के नीचे तेरी हथेली है।
0: ओ क्या बात है।
1: ठीक है, तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊंगा, आपको भेज दूंगा। अच्छा, मैं उनको नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानते थे, जबकि तनवीर भाई ने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे। इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे। तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब वो मेरी शायरी दोस्ती का जरिया बनी।
0: ओह क्या बात
1: हाँ,
0: है।
1: तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, कैसे सरवाइव करूँगा, इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई
0: जी
1: आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी तनवीर साहब से, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों के डायलॉग राइटर होते थे,
0: जी जी
1: तो एक जरिया था। तो मैं सूरत से मुंबई आ गया 2001 फरवरी में।
0: जी
1: और फिर तनवीर भाई के साथ घूमना फिरना, उनके सेट पे जाना, शूटिंग में जाना, ये सब मीटिंग वीटिंग में उनके साथ जाना, ये सब हो रहा था। उसी जमाने में रूप भाई से मुलाकात मेरी थी।
0: जी
1: तो ये दो लोग थे जिनसे मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। तो रूप भाई मेरे गाने कंपोज कर रहे थे। अच्छा, दोनों से एक दूसरे के बारे में मैं बात करता था। मैं इनसे कहता था भाई रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। अरे मैं सुन के क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टर हूं ना प्रोड्यूसर हूं। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे,
0: जी
1: बाद
0: जी
1: में डायरेक्टर भी
0: जी
1: बने।
0: जी जी
1: तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुक्कू कोयली जी, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े आदमी, अलग बिजनेस से, रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया साहब, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो बड़े लोग बना रहे थे पिक्चर, अमरीश पुरी साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार था। फिल्म उन्हीं की थी सच पूछो तो, बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई रूप भाई को फोन करो, उनको बुलाओ, मैं सेटिंग कराता हूँ कुक्कू जी के साथ, फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो मैंने फोन किया रूप भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं थे वो, मैं तो यहाँ हूँ। अरे मैंने कहा कि भाई ये सेटिंग करनी थी तो कब आएंगे? तो कुछ 15-15 दिन बताया कि बाद आऊँगा। तो खैर जब तक वो आते तब तक उस फिल्म के कई गाने दिलीप सेन समीर सेन जी ने रिकॉर्ड कर
0: कंपोज कर
1: लिए
0: लिए
1: थे
0: थे।
1: और वो गाने लिखे थे निदा फाजली साहब ने। अब जब रूप भाई आए तो हमारी

0: सिटिंग शुरू हुई तो उनके पास एक गजल थी कतील सिपाही साहब की, जिसकी झनकार में दिल का आराम था वो तेरा नाम था।
1: क्या बात है।
0: तो वो तेरा नाम था इसी गजल से लिया गया था।
1: ओ अच्छा, क्या बात है भाई, अच्छी दिलचस्प कहानी।
0: हाँ मतलब पहले से कुछ नाम भरे रहा हो पिक्चर का, लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ ये गजल, तो वो तेरा नाम था कतील सिपाही साहब की गजल से लिया गया। ये नहीं कि गजल बाद में, गाना बाद में बना
1: जी,
0: पहले जो है गाना आया उसी में से नाम निकाला गया। जैसे मदहोशी थी उसका नाम मुमकिन था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मदहोशी के डायरेक्टर तनवीर खान साहब थे, राइटर डायरेक्टर, उसका नाम मुमकिन था। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया मदहोशी, तो इंदर कुमार साहब थे उसके प्रोड्यूसर, उनकी वाइफ थी और उनके साले, तो इंदर कुमार साहब ने कहा कि यार इसका नाम बदल दो, मदहोशी कर दो, ये जो गाना रिकॉर्ड किए हो ये टाइटल सॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से मुमकिन हटा के मुमकिन नाम से उसका प्रचार भी शुरू हो गया था। बाद में वो मुमकिन हटा के मदहोशी किया गया, तो इस तरह से वो टाइटल आया वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए, और उसमें कतील सिपाही साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई फिल्म में। उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना, वो ये था कि सुबह हो रही है, भोपाल का माहौल है, 1947 मुल्क आजाद हुआ है और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है। ये उस टाइम की कहानी थी, और समद खान कोई वहां के बड़े क्लासिकल सिंगर थे। तो सुबह हो रही है और पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है, और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के, और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कहीं वादियों में गा रही है। तो ये सिचुएशन थी
1: जी,
0: और फिल्म इसी गाने से शुरू होती है। तो वो मैंने लिखा था, मुझे पसंद है वो जो राइटिंग है, और वो गाना इतना, मतलब अलका जी ने गाया उसको और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी माता जी को फोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं। फिर वो गाना रिकॉर्डेड रूप भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया, है ना दीदी, मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने। तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने, तो डांटा उन्होंने प्यार से
1: कि मुझे,
0: अरे ये गाना तो मेरा था, तूने मुझसे क्यों नहीं गवाया।
1: बड़ा कॉम्प्लीमेंट था।
0: हाँ, तो ये गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स हैं के पूरे साहित्यिक, उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको
1: जी।
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है, सुबह हुई दिन निकल रहा है, नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है।
1: क्या बात है,
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है।
1: वाह, बहुत
0: आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन पर ये सुबह इसी गाने से होती है, डेली ये गाना बजता है।
1: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए,
0: मदहोशी का टाइटल सॉन्ग सुना दे, मदहोशी है, मदहोशी है।

0: शकील साहब, एक बहुत जरूरी सी बात है और आपके करियर में भी बहुत ये उम्दा बात है, खास बात है। अपने श्रोताओं को बता दें कि आपने कहीं बहुत सारी जगहों पर, आपके बारे में पता है कि बहुत ऊंचे दर्जे की तालीम नहीं ली, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला आपको, लेकिन एक ऐसी तालीम है जो आपके भीतर है, आपने खुद से ली होगी। राम के वनवास पर आपकी बहुत सारी नज़में हैं, जिस पर किताब भी आई है और जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से खोज की आपने, इतने बड़े फलक पर आपने कैसे कुछ कोशिश की, बताइए।
1: मेरी उर्दू में 8 किताबें हैं।
0: जी
1: मैं साहित्य से, उर्दू साहित्य से ही फिल्मों में और मंचों पर आया। 20 साल तक मैंने सिर्फ साहित्य लिखा, साहित्य के मैगजीन में छपता रहा। मैं बाद में इधर आया फिल्मों की तरफ और मंचों की तरफ। तो ये जो काम है मेरा, ये मैं जंगल पर लिख रहा था, जंगल पर लिख रहा था, और लिखते लिखते उसी दरमियान उर्मिला का जो किरदार है वो कहीं से मेरी जिंदगी में आया।
0: हाँ।
1: उर्मिला जो लक्ष्मण की बीवी है, लक्ष्मण की जो पत्नी
0: जी,
1: है
0: जी।
1: उस किरदार ने मुझको झकझोर के रख दिया, मुझे हिला दिया उस किरदार ने, उसके बलिदान ने, उसकी कुर्बानी ने,
0: कि वनवास होता है लक्ष्मण को 14।
1: हाँ, और अहिल्या, ये दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत बेचैन किया मुझे। और उसी जमाने में जब मैं अहिल्या के दर्द से दो चार था, उसको जी रहा था, और जब ये नज्म हुई उर्मिला, जब ये नज्म मैं लिख चुका, तो मुझे लगा कि यार जो रामायण है
0: जी,
1: वो पूरी घटना जो है वो जंगल में है, वनवास जो राम जी का है 14 बरस का, तो क्यों ना रामायण के किरदारों पर नज़में लिखी जाएं। तो मेरी जो रामायण है वो वाल्मीकि जी से लेके अब तक जितनी भी रामायणें लिखी गई हैं,

0: तुलसीदास की। जी हाँ, तो और भी हमारे दूसरे लोगों ने लिखी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का काम है इस उर्मिला पे,
1: उर्मिला सखी वे मुझसे कहकर जाते।
0: हाँ हाँ,
1: बहुत बढ़िया।
0: तो सभी ने मतलब कहानी के माध्यम से कहानी कही है। मैंने एक नया रास्ता निकाला, पात्रों के जरिए से, किरदारों के जरिए से मैंने रामायण कही है मैंने कहानी। तो मैंने तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में लिखी, एक के बाद एक, जीता गया और लिखता गया। इस तरह से वो पूरी एक अलग सी रामायण हुई। और पहले मैंने उसका नाम सोचा था जंगल यात्रा, उस किताब का, क्योंकि जंगल पे काम कर रहा था ना, तो उस किताब का एक बड़ा हिस्सा जंगल भी है, रामायण और जंगल दोनों है उसमें। तो वो मेरे लेखन क्षेत्र में आता था, मेरा जो टॉपिक था जंगल, उसमें वो वनवास आता था वो। तो जब ये रामायण उसमें शामिल हो गया, तब मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसका नाम वनवास रख दिया जाए, उससे बेहतर क्या नाम हो सकता है, अगर जंगल पर किताब है, रामायण पर किताब है। तो वो जो है इस तरह से उसका नाम वनवास रखा गया। और वो किताब इतनी सराही गई है, उर्दू में उसको कई अवार्ड मिले, और उर्दू के जितने भी बड़े क्रिटिक्स और पोएट हैं उर्दू साहित्य में, तकरीबन सभी ने उस किताब पर आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं, मजामीन लिखे हैं। तो किताब पर किताब का आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उस किताब पर इतने आर्टिकल लिखे गए कि वो अलग से एक किताब आई है। उसको प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब हैं, जो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उर्दू के, उन्होंने वो किताब कंपाइल की है।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो इस तरह से उस किताब पर किताब आई। और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान के राइटरों को भी उस किताब ने बहुत इम्प्रेस किया। वहां पर एक बड़े राइटर थे, अभी उनकी डेथ हुई है, जो फिल्म के भी राइटर थे, साहित्य के भी थे और मंचों के भी थे, जिस तरह हमारे यहाँ जावेद साहब है, गुलजार साहब है, इस तरह का वो नाम थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अभी इंतकाल हुआ उनका। उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है और किस तरह से मतलब हिंदू मैथोलॉजी और रामायण को लेके जो उनकी मालूमात थी वो भी कमाल है, वो जो लिखा है उन्होंने, बहुत अच्छा लिखा है। ये किताब हिंदी में जब आई तो पिछले 3 सालों से बेस्ट सेलर है, कविता की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में एक है ये।
1: क्या बात है।
0: पिछले 3 साल से लगातार, और अभी को दैनिक जागरण ने बेस्ट सेलर अवार्ड दिया गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से मुझे।
1: क्या बात है।
0: तो हाँ, बहुत शुक्रिया।
1: और बहुत बढ़िया बात कही है। और आपके मुशायरों का जिक्र तो हुआ, शुरुआती मुशायरों का, लेकिन बाद के मुशायरों में हमने खुद देखा है, मेरी खुशनसीबी है कि हमने आपको खुद देखा है, और कलिंगा फेस्टिवल में देखा, प्रयागराज में हमने आंखों से देखा था, जहां अनुभव सिन्हा जी भी उपस्थित थे, और आपकी जो शायरी थी वो आपके खजाने से निकल रही थी और पूरा हॉल खचाखच भरा था। ऐसे तमाम अनुभव हैं, तमाम वाक्यात हैं जिनकी बातें हम आपसे और फिर कभी करेंगे। आज तो बस इतना हम कहना चाहते हैं, धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है। आपके ही अल्फाज हैं, आप क्या कहेंगे, आप विविध भारती के श्रोताओं को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे चलते चलते?
0: मैं यही कहूंगा कि अभी आपने जो सुनाया है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, तो प्यार बहुत जरूरी है। और दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो मोहब्बत कीजिए, सबसे पहले तो खुद से मोहब्बत कीजिए।
1: कुछ शायर में एक शायर से हम उम्मीद करते हैं, शायरी में ही कुछ बोले शेर के साथ
0: जी,
1: कोई अशार।
0: मैं अभी इधर एक नई गजल कही है मैंने, उसके 2-3 शेर सुना देता हूँ, और उसमें एक शेर है खास तौर से उसके लिए मैं ये शेर सुना रहा हूँ कि उसमें ये भी एक शेर है, सीख है कि भाई ठीक है, ऊंच नीच होती है, कुछ हमारे अलग अलग सोच होती है, लेकिन उस सब को हटा के आगे की तरफ बढ़ते रहो।
1: क्या बात है।
0: मोहब्बत करते रहो। कि आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है।
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ। वो शेर ये है जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, वो आप आगे बढ़ें। सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर,
1: क्या बात है।
0: सांपों को मैंने रहने दिया
1: उनके हाल पर।
0: उनके हाल पर मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह,
0: ठीक है, मैंने उसे बदला नहीं लिया। मैंने मंत्र आता था मुझे, लेकिन ठीक है यार, तुम तुम्हारे रास्ते मैं अपने रास्ते। इसका एक शेर आखिरी खास तौर से कि देखिए, ज्ञान जो है ना
1: जी,
0: शायरी में ज्ञान की बहुत जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके पास ज्ञान भी होता है अलग अलग, तो वो शेर में आता है रचना के तौर पर, रचनात्मक तौर पर आता है, तख्लीकी तौर पर, तो बहुत असर करता है। तो एक महाभारत का एक इल्म है, एक ज्ञान है जो इस शेर में आता है, मैं सुनाता हूँ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है।
1: क्या बात है, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है। वाह,
0: ये सीख है हम सबके लिए। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है
1: जी।
0: लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है, वाह वाह। तो अब अपने श्रोताओं से, हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि हम इजाजत लें, और लग रहा है कि आपसे गुफ्तगू जारी रहे, और बहुत सारी अभी बातें हैं जो बाकी हैं आपसे पड़ताल करनी। आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर से आप मुंबई जैसे महानगर में आकर और इतना नाम रोशन किया है, शायरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको पूरे विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद हम दे रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब।
0: आप भी बहुत शुक्रिया ममता जी।
2: जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

जिधर देखें उधर मस्तियां हैं, शोखियां हैं, तेरी निगाहों के ऐ सनम, जरा घबरा के जरा शर्मा के लूटते जाना, जलवे हैं तेरी निगाहों के ऐ सनम।

सीने में मोहब्बत का अंगारा, कोई क्या जाने कैसे बनेगा सहारा, ये बादल आवारा इसे कौन

रुत, ये नजारे, ये मस्त निगाहें, भूलना नहीं है ये पहली मुलाकात, ये प्यार भरी बातें, जीने के सहारे इन्हें भूलना नहीं है।

0: आंखें
1: तूफान उठाएगा ये जमाना, उठाने दो, दिल तो दौड़ता ही जाएगा अपनी मंजिल की ओर। नजरें मिली हैं तो सपनों की महफिल में शमा जलती ही रहेगी, दो दिल बढ़ते ही जाएंगे अपनी मंजिल की ओर।
2: तस्वीर तेरी दिल

सितारों का झिलमिलाना, चिरागों का जलना दे रहा है इशारा, तुझे रोके तो कैसे। दिल पहले भी कब भरा था, आज भी प्यासा है, ये आजमाइश होती ही रहेगी। ऐ सनम, तुझे रोके तो कैसे।

Walker. Walker. I'm just a moonwalker. Walker.

0: रेज मोबाइल ऐप के।
1: कुबलेशिबुन अब रेडियो एमलांग पीवी इसनोक तिलांग पीवी हे परचांग योंग ए वो चक्री भी रबहा ये भी उमान की अनरुरी मेंटर देलांग वक रेस ने रिसर्च ऑडियंस इंटरएक्टिव सर्वे एंड इवैल्यूएशन लंबा के निगम मोबाइल एप्स योंग ई ये पीवी जिगमन है ये तो वा इरुकम ए प्रोग्राम के अनाउंसर कम जोले इस यंग सुग इमन तो योंग की प्रोग्राम ये पुले ये नी दे वक न्यान पे हाक लिंक न फेसबुक नेक दे रिजिस्टर ए जिगमन योंग पे युराप को ये ओपन भा वे वो रा ये ना वो भा का आकाश वनी कम ते हमंदो कम की नंग अप हिडन हनरे या खमत है वो वन राय इकला चिरुप वक रेस मोबाइल ऐप।

0: Yo bang ini mitai. Ubamo semen semen.
1: Oi pa, uni mitai yong na tan ma, to yong pi. Ha pen duna pi bang tiang.
0: Ni ham betai. Hawa kwa im sen o. Ubam ba yo. Tang wo bang ikte nem per.
1: Oh, bang bang ste pa. Mani yo ikijot wan dau seja. U yo iko ikia upura. Pen duna ikleng i blo u chini. Na yong sudang i chadi tu yong i. Yo kwa ju kia men red men kuwi.
2: Ne ba upat ba da ka Commissioner of Food Safety Meghalaya. Shillong.
3: आज से ही सॉल्ट, फैट्स और शुगर में कटौती कराना शुरू कर दे। खाना पकाने के दौरान थोड़ा सा उपयोग करा के इस प्रक्रिया को शुरू करें। ताजी सब्जियां, दही और फलों में भी और ना डालें। क्या आप अपनी चाय चीनी के साथ लेते हैं? कोई बात नहीं, आप पी सकते हैं, लेकिन अपनी चीनी को लगभग आधा चम्मच तक कम कर दे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहा है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

चलो रस्सियाँ सीख तो यार लिख रुआ के रुआ वो चिमने का फिल्म बेशरम तो रुआ दिल का जो है हे यू आर वन तेरे महले नंगे इतने सीवी रन ही रुआ वो चिमने फिल्म डाक तो रुआ हम डाक का अफसाना।

0: स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताएं क्या
1: कनेडा
0: पूछना
1: का
0: चाहिए।
1: आकाशवाणी शिलोंग की खबर है कि तीन जनता की वो पूरे जफी दा उपन्चे लतियां ता छुआ उपोय की खबर तन जपे छुआ ई गिन की मत की कोंसन वाई पाइट बा गमी खालिया ये खुशनाम अचीवर ऑफ द मंथ कम चीवन ताई ले कमन ये का एंटरप्रेन्योरल एंड एक्सीलेंस sedang kejelami khalia ye gur kom lum thop wei wo pentikna ye ki pertu ha ki kutlu yung ye ne bentai thap bod kwa hapo ka sir pensnya gur khalia wagi youtube chapang ki karkhana wagi kredang ye go upen klan ye ka sab kre kam hai liang ki kor ki bor wo ke juk ko kat ni pen skem ka jhadc ga an e kur pentibu si ember jendep ki tho gi jing pen bet ne bentai wo wan ra hakmat ke yung dor ba kini to gi khubor ki wo benia Kejelami khalia rawa pat ba ke jing sedang hai to ke khusnam achiever of the month kam chiven tao tip me di kam gi bu kru gi man gi sanchi san man gi sanchi semen le le gi ne ven tao pun chlori gi na

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: Kublishibuna radio amlang piwi bisnokti lang piwi he perchang yong e wo chakri phi rabha yipiuman ki honorary mentor delang work race ne research audience interactive survey and evaluation lingba ni go mobile apps yong e yipiu e jingmon heyto wa irukom e program ki announcer kamjule isyang suwe imtoy yong ki program yipule ye ni dei wa khnyan phi ha ka link na facebook nei te register aging mud yong phi yurap ko yi open ba wei wo ra ye na mo ba ka akashwani kam te haman do kam ki nong ap hidan hanrei ya khamat he wa wan ra yi kala chirup ba

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ककुबोर गोफा द पोय बियांग कसिन वनंकोंग वाउ थाप परतुइट नेबेंटा इथाप वोट कोलो खोट परतुइट का स्पेशल इंटेंसिव रिविजन आर हजार आर पाउंड रू
6: स्न्याओ कमो अंगी वडो एम गी ब्रू वो वन थाप परतुइट छियुंग योंग ना टिप कमन माउले अ
5: हु सुकाय ते हरो एडु यूटिप युवतिकना मंदो वन की इनुमरेटर छपी नदो खले फाउ ट्रिक उनाइन रू आर हजार आर पाउंड रू हदो का आर पाउ कन दे ट्रिक उनाइन याव आर हजार आर पाउंड रू
6: तंगवा कमन ले ले दे एम इवो कलिया
5: हम कुसला ये ते ये पिउ ले दे व जम जाय डू दे फोन या OBLO वेदाउ यो पी ये जिंग छे
6: कम ऑन वन यो ये फोन नंबर OBLO
5: फोन हाउ नंबर वी कैन दे सन नॉट वे पान जिंग रप वो यो ये कलाम या OBLO ले ने डाउनलोड वे वाई या इसी नेट अप ले दा एम कम जिंग पताई पी ये रप युवा क्विट वन टी फोन पी हक स्पीड यो ये रप पी
6: अदे सुख भाम पिया
5: कम ते से मेम कम कॉट मेम कम स्ला फॉर वली थॉ परतुय पंखरे वो ए डी यूट्यूब इवतिकना वे थो जिंग टिप ना OBLO उयंग पी
6: कनमो वे यूट्यूब इवतिकना वे ए पी ने पंतिकना गो ये बो जिंग थो उप्लिया ने भा कमन रे रे एम कैमरा पी फोन OBLO वे यो स्मार्ट ये जुबा
5: रिपोर्ट था प्रति तो न दो खले फाउ थ्री उनाइन रू हदो का आर फाउ कन दे थ्री उनाइन याओ आर हजार आर फाउ रू
6: इक्रे लंग इचि मंता मन उनेका वद चिम जिंग खेन दवनरा दो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मेघालय
7: तलाग लस्याम ये तो यारी रोहाई ने कुछ उराम सुचंग की रोहाई है कि तीन जंतिया की रोहाई कुछ कनी इब्तु की रोहाई खूब लेखा दो वारुन थेलुट इमोन सेवी रोहाई ने कुछ उम्बाई मिंबर इब्तु की रोहाई तेन लपतेन।

0: दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों,

0: कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: दिल्ली और चार राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
3: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना

0: इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi. The discussion focused on 2 key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. During the interaction, the secretaries outlined the major steps being taken by their ministries and departments in line with the 2 key themes. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow. On the eve of the nationwide rollout of VB G Ramji Act 2025, Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added, the enhanced guarantee of 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets.

0: IST. The Board of Control for Cricket in India has announced a 15-member women's squad for the Asian Games 2026, which will be held in Aichi, Nagoya, Japan, later this year. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living, also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch three projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in the FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York, while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. That is all in the news at 9. Good night.
1: किसी बॉलर का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए क्लैक्सटन छठे ओवर की दूसरी गेंद अर्धशतक के नजदीक पहुंच रही है ऑस्ट्रेलियन बैटर्स कुल मिलाकर छह चौके और एक छक्का अब तक लग चुका है इस पारी के अंदर 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने जब विश्व कप जीता था तो पेरी ने विनिंग स्ट्रोक लगाया था चौका और वही पेरी आज भी अपनी टीम के साथ यहां मौजूद
2: As the next delivery, that shot of a length and off the back foot, just plays it across at the onside. The fielder in hot pursuit but can't get to it. And that's a boundary onto the onside to the mid-on region.
1: तो एक और चौका ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए अब 53 पर रनों की रफ्तार में कहीं कोई नियंत्रण दिखाई नहीं दे रहा मुनी जिस तरह से उनकी निगाहें जमी हुई हैं कोई भी स्ट्रोक खेलने में उन्हें परेशानी नहीं हो रही अच्छा खासा तजुर्बा है मुनी के पास और उस तजुर्बे का यहां पर भरपूर लाभ लेते हुए बढ़िया चौका और मुनी पहुंच गई अब 15 गेंदों पर 31 रन की व्यक्तिगत रन संख्या पर क्लैक्सटन पहली गेंद पर चार दिया दूसरी गेंद पर चार दिया और यह तीसरी गेंद क्लैक्सटन की लेकिन चलिए वहां पर फील्डर मौजूद थी और इसलिए रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं शॉर्ट कवर पर गेंद फील्ड हुई क्लैक्सटन का ये पहला ओवर है अब तक अगर आप देखें तो चार गेंद पासों का इस्तेमाल किया है हेनरी है मैथ्यूज हैं रमार्क हैं और इसके अलावा क्लैक्सटन और जहां तक फील्ड प्लेसमेंट का सवाल है ऑफ साइड पर एक अलग तरह का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश क्लैक्सटन की ऑफ स्टंप के काफी बाहर डाल दी गेंद और जब आप इतनी विड देंगी तो ये चार लगेगा बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई गेंद चार रनों के लिए
3: ये लगा आभा का चौका
1: ऑस्ट्रेलिया अब 57 रन दो विकेट के नुकसान पर गेंद का इंतजार किया बहुत ज्यादा विड दी थी प्रेम
2: वेरी क्लेवरली पुट्स इट अक्रॉस एंड यूज़ द पेस ऑफ द बॉल देयर एंड एक्सटेंड्स द बैट टू हर लेफ्ट फार अवे फ्रॉम द बॉडी इन कंट्रोल ऑफ द शॉट एंड जस्ट प्लेस इट वेरी लेट एंड द बॉल स्क्वीजेस थ्रू द गैप दैट इज अ वेरी वेल प्लेस्ड शॉट
1: क्लैक्सटन काफी खर्चीली साबित हो रही है अब तक तीन चौके दे दिए उन्होंने इस ओवर में आए हाथ से राउंड द विकेट और इस बार इस गेंद को निकाला फाइन लेग की दिशा में हालांकि ये दो रन बनेंगे वहां पर जब तक गेंद वापस पहुंचती तो कुल मिलाकर 14 रन अब तक खर्च कर चुकी हैं क्लैक्सटन अपने इस पहले ओवर में और ये विकल्पहीनता की स्थिति है क्या कप्तान अगले ओवर में फिर क्लैक्सटन का इस्तेमाल करेंगी या गेंदबाजी में कोई परिवर्तन करेंगे उनके पास विकल्प हैं लेकिन वो विकल्प कितने कारगर साबित होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और वो भी तब जबकि आपने कोई बड़ा स्कोर खड़ा नहीं किया है सिर्फ 67 रन चाहिए 85 गेंदें बाकी बार बार विड दे रही हैं और उसका बहुत सही इस्तेमाल गैप्स का एक और चार
3: ये लगा आभा का चौका
2: So, six was gone, 63 for two, drinks on the field, but misery for the West Indies side. One must say that 18 runs of the last over from Claxton, who bowled her first over in this tournament, and he was, she was no

0: were in the line of length, and the batters prevailed, and Mooney obviously making sure that she tormented the bowlers, pulverized the bowling attack. And Sanjay, something very interesting, the two most dangerous batters are on the field right now for Australia. You've got Perry, who's got a strike rate of 140 plus, and you have got Mooney, who's got a strike rate of 137 plus. Both of them, Perry had two half centuries and Mooney had one half century this particular series. So they are in a perfect mode to strike, and why not?
1: बिल्कुल, खास तौर पर एलिस पेरी का अगर आप जिक्र करें, और मूनी, ये दोनों काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। बेथ मूनी अपना 124वां मैच खेल रही हैं और एलिस पेरी 180वां मैच खेल रही हैं, तो ये बताता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा तजुर्बेकार खिलाड़ियों में आप शामिल करना चाहें तो ये प्लेयर्स निश्चित तौर पर हैं, और ये दोनों सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर और अपना अनुभव जिस तरह से प्रदर्शित करती हैं और उस अनुभव का जिस तरह से अपनी टीम को लाभ देती हैं, वो भी सचमुच काबिले तारीफ है।
0: एंड समटाइम्स आई वंडर आर वी मैच वॉचिंग द सेम मैच ऑन द सेम फील्ड, बिकॉज ऑन द सेम वेरी ग्राउंड वेस्ट इंडीज वर स्ट्रगलिंग एंड यू फाइंड दीज टू बैटर्स मूनी एंड फेरी प्लेइंग ऑथेंटिक क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स, बोनाफाइडी स्ट्रोक्स।
1: बिल्कुल प्रेम, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को अगर आप एक टीम की जगह पर एक मशीन कहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उनके बैटर्स, उनके बोलर्स सब अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाते हैं और उन्हें पता है कि उन्हें करना क्या है। वो मशीन की तरह खेलते हैं, चाहे मुकाबला कोई भी हो। आप पांच के पांचों मैचेस लीग दौर के देख लें और उसके बाद ये छठा मुकाबला भी तकरीबन उसी तर्ज पर चलता हो।
0: एब्सोल्युटली, आई मीन नो अदर फैक्टर कैन रियली रीडिफाइन द गेम ऑफ क्रिकेट। एंड शमा सैनी सेज दैट इन ऑस्ट्रेलिया 63 for 2, इट्स गॉट 9 बाउंड्रीज, 36 रन ऑफ फोर्स एंड अ सिक्स, सो यू कैन इमेजिन that 42 runs of this has come through boundaries and a six, out of which just about 11 dot deliveries. That is the way the batters have batted, playing some authentic cricket. They haven't played more often than not across the line. They have selected the right shot, maybe over the 30-yard fielders, or picked up the gap well and played with a certain level of accuracy and commitment.
1: Nisandeh, tareef karni hogi Australia ki. Ab dekhna hoga ke final mein kaun pahunchta hai, Dakshin Afrika ya England. और उन दोनों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है ऑस्ट्रेलिया की। 2010 पहली बार इन्होंने वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद सातवीं बार वर्ल्ड कप जीतेंगे अगर ये टूर्नामेंट को जीतते हैं, खिताब जीतते हैं। और तमाम जो T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हैं सब में वो सेमीफाइनल में पहुंचे, तो लगातार बेहतर प्रदर्शन का उनका सिलसिला जारी।
0: एंड इफ इंग्लैंड विंस, आई एम जस्ट सेइंग अज्यूमिंग, then it will be another women's ashes repetition. And if South Africa comes in and they play against Australia, Australia has already defeated South Africa once in this tournament, being from the same group. So one must say that it's going to be a contest either way. But England has really done well for itself this entire tournament. And if England and Australia clash, I'm sure going to be a marquee kind of a match in the final. It's going to be a great crowd catcher. So 6 matches, 8 wickets for Elia Eleni. And she is coming into bowl. Wonder what she would be doing. She is a seam bowler. Over the wicket, right arm. Balls. Short of a length. Width of a good fielding. Saves the blushes at the backward point region. Else that ball would have gone for a wonderful boundary of the backward point region. So much of width offered outside the off stump. The batter was almost prompted to go away from the line and play a hard shot, but well picked up there at backward point. So while this conflict goes on, so the halfway mark has been reached as the next delivery. Once again, the fielder there is Stephanie Taylor at the backward point region and picks up no runs taken. We are 63 for 2, and Shama just reminds me that it's halfway through. Another 63 more runs, and that will take them to the finals once more. But the West Indies will have to do something really out of the skins if they have to bring in some kind of positivity, which now looks slightly diminishing with each run scored. As here is Eleni coming into bowl, over the wicket to Perry. Perry of the back foot strikes the ball. Goes into the
2: हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि गैर कानूनी माइग्रेशन, इस्तेहसाल के तौर तरीकों, धोखेबाज बिचौलियों और गैर कानूनी तरीके से लोगों को लाने ले जाने से निमटना सभी मुल्कों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महफूज और कानूनी तरीक़ाकार के तहत मोबिलिटी के भारत के अज़्म की अक्कासी ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से होती है और इसके आगाज़
0: शॉर्ट सिलेक्शन

0: pretty good. As here is Aline bowling, another back of the length, and the batter goes on the back foot and thumps the ball into the mid-wicket region. Once again, the captain comes, Matthews picks it up and allows not even the thought of a single on that occasion, and the score still remains. So well, Australia looking confident. They have maintained their momentum. They're making sure that they move in a very structured way. They don't have to commit harakiri. They don't have to manufacture a stroke or play indiscreet cricket. They just have to pace their innings properly and they will cross over that 125. Here is Aline bowling in the next one, and this time she once again bowls a slow delivery and the batter very unable to strike. And what a wonderful over so far. The best of the overs from West Indies, Aline. Five dot deliveries, and if this is a dot, I think this should be the first maiden over of the match. We haven't seen a maiden over, and a T20 to have a maiden over, obviously not at this time, because the option is not to bowl a maiden over. You have to get a wicket. That's more important. Aline comes into ball. Over the wicket to the right-handed Perry, who's on one of six. Balls of next, the last delivery, and this time she drives and gets a single. So the last delivery gets a single, obviously not a maiden over, and that takes the score up to 64 for 2 after 7 overs, Australia.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली। जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
3: ली। जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7। तुम
4: सातवां ओवर शुरू हो रहा है 64 पर 2। ऐसा लगता है कि कुछ परेशानी संभवतः पेरी को, और गार्टनर ने उनकी जगह ली है। फ्लेचर क्लैक्सटन की जगह गेंदबाजी में। फ्लेचर का जहां तक सवाल है, कुल मिलाकर 6 मैचेस में 4 विकेट, बेहतर इकॉनमी, लेकिन आज उस इकॉनमी का किस तरह से इस्तेमाल करती हैं। इस बार ऑफ स्टंप पर टप्पा डालने के बाद थोड़ा सा बाहर की ओर निकाला, बैकफुट पर गई, गेंद को खेला एकदम स्ट्रेट। हेनरी जब तक गेंद को फील करती, दौड़ करके वहां पर रन पूरा किया। और जहां तक पेरी का सवाल है, रिटायर्ड हर्ट हो गई हैं और इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा है। पिछला ओवर जो उन्होंने खेला था एलिने का, उस ओवर में ऐसा लगा कि वो बहुत सहज महसूस नहीं कर रही। सिर्फ इकलौता रन बना था, वो भी आखिरी गेंद पर, अन्यथा पहले 5 डॉट बॉल डाली थी एलिने ने और तमाम गेंदों का सामना पेरी ने किया था, तो कहीं ना कहीं शायद वो कुछ असहज महसूस कर रही थी और इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा। उनकी जगह पर गार्डनर आई हैं बैटिंग के लिए। 66 पर 2 फ्लेचर को लगाया गया है। फ्लेचर कितनी कारगर साबित होती है लेने के बाद। फ्लाइट कराने की कोशिश, ड्राइव किया हाफ बॉली पर लेकर के, बॉलर के नजदीक से बॉल निकली। कोशिश की थी फ्लेचर ने बॉल को अपने नियंत्रण में लेने की, लेकिन कामयाब नहीं, एक रन लेने से नहीं रोक सकी। इस एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 67-2 विकेट पर। पेरी का बाहर जाना थोड़ा सा परेशान करने वाला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिस स्थिति में है, ऐसा लगता है कि अगर उन्हें थोड़ी बहुत कोई परेशानी थी तो उनके लिए विश्राम ज्यादा बेहतर एक साधन हो सकता था। फ्लेचर, पहला ओवर है उनका, अब तक 2 गेंदों पर 3 रन दिए उन्होंने। पहला सेमीफाइनल विश्व कप T20 का 2026, जहां दूसरे सेमीफाइनल में इस मैच की विजेता टीम का मुकाबला होगा इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की विजेता से। लेग स्टंप के बाहर थी, इस गेम को खेलना चाहती थी, वाइड का इशारा आना चाहिए, आया, एक रन अतिरिक्त के तौर पर जुड़ा और अब 58 रन चाहिए।

0: ये 76 गेंदों पर। फ्लेचर की अगर आप गति देखें तो बहुत ज्यादा नहीं, तकरीबन 75-76 के आसपास, लेकिन उसके बाद भी अगर आप वाइड डालेंगी, नो बॉल डालेंगी तो वो परेशानी का सबब। पैरों पर बॉल डालने की कोशिश, कदमों का इस्तेमाल, हल्के से केवल दिशा दी और दौड़ करके एक रन पूरा कर लिया, बल्कि एक नहीं दो रन जब तक गेंद फील्ड होकर के आती, काफी वक्त था दूसरा रन दौड़ने का। तो काफी कॉन्फिडेंट बैटिंग है ऑस्ट्रेलिया की, कोई परेशानी नहीं और हल्के से केवल गेंद को खेला। कुल मिलाकर 6 रन इस ओवर में एक वाइड को मिला करके, और इस बार हल्का प्लेस किया था।
1: 71 for 2 and 7.4 overs. Fletcher, who's got 4 wickets from 5 matches, but for the moment the objective is to keep the batters silenced. You got Gardner, 4 matches and 112 runs, strike rate being 169.6, so another batter with a very, very devastating kind of strike rate.
0: तो फ्लेचर अब तक कुल मिलाकर 7 रन दे चुकी हैं। उनकी ये गेंद इस बार फिर फ्लाइट कराने की कोशिश, हल्का सा शफल किया, मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला, इकलौता रन। हर गेंद पर रन लेने की कोशिश, रनों की रफ्तार बनी रहेगी। एशले गार्डनर एक ऐसी बैटर जिन पर इस टीम को पूरी तरह से भरोसा है, 105वां मैच अपना खेल रही है गार्डनर, और भारत के खिलाफ क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है इससे पहले। हालांकि पेरी ने भी 38 गेंदों पर 56 रन बनाए थे, और गार्डनर इस समय देखना है कि अपनी टीम के

0: kubli sibuna ab radio amlang phiwi pisnok tilang phiwi he perchang yong e wo chakri phi rabha ye phiman ki honorary mentor deilang wak race ne research audience interactive survey and evaluation lengbak ni go mobile apps yong e ye phiwi jingmon heyto wa irukom e program ki announcer kam chule isyang su wi mon toy yong ki program ये फुले ये नि देव खन्यन पे हक लिंक न फेसबुक नेते रजिस्टर ए जिमुत योंग पे युराप को ई ओपन भा वेबो रा ये ना मो भा का आकाशवाणी कमते हमंदो कम की नंग अप हिडन हनरे या खमत हे वो वन रा ई कला चिरुप बक रेस मोबाइल ऐप
1: Telah rasanya jadi ahli ruai negara yang mai unsur dalam tiruai najitkan saya warun uyonga. Iruai pesiap ini pol iruai warna negara yang kayu war pesap tiruai tempang warun cijur cijur.